0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
0: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लगण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।

हा जी साईं मुंहिंजा, असांजो अॼु जो जेको सवाल आहे त हिकु मिंट में बिजली जी रफ़्तार केतिरी आहे। जी हा, उमेद त तव्हां सवाल नोट कयो हूंदो ऐं असांजो सवाल इहो आहे त बिजली हवाले सां त बिजली जेका तेज़ रफ़्तार आहे हिकु मिंट में केतिरी आहे। जी हा, तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाब एस एम एस ज़रिए ॾेई सघो था। असांजो एस एम एस करण जो आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन वेंदव, उते एस एल आर के लिखी तव्हां स्पेस ॾींदव, उन बाद पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, सवाल जो सही जवाब लिखी करे तव्हां 888-1 ते सेंड कंदव। ऐं जेकॾहिं तव्हां फेसबुक ते प्रोग्राम ॿुधो पिया या ॿुधण चाहियो था त असांजी जी एफ एम 88 जी जेका आई डी आहे, जेको असांजो फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं तव्हां असांखे लाइव कॉल ज़रिए असांजे स्टूडियो में मोबाइल ऑन थींदी 10 बजे न्यूज़ खां बाद में, तव्हां असांखे सवाल जो जवाब लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। साईं मुंहिंजा, ही अखियूं, ही नज़रूं, ही दीदूं सदाई मुसाफ़िरनि जीअं सफ़र में रहंदियूं आहिनि। ही हर वक़्तु मुतलाशी रहंदियूं आहिनि, कॾहिं कंहिं ख़ूबसूरत चीज़नि जूं त कॾहिं किन ख़ूबसूरत चहिरनि ऐं अखियुनि जूं। ही अखियूं, ही नज़रूं, दीदूं पंहिंजे प्यार, पिरी ऐं ख़ूबसूरत अखियुनि जूं ॻोल्हाऊं हूंदियूं आहिनि। अखियूं सदाई सूंह ऐं प्यार जूं प्यासियूं हूंदियूं आहिनि। सूंह अखियुनि जो नूर वधाए छॾींदी आहे। जेसी ताईं अखियूं को ख़ूबसूरत चहिरो न ॾिसनि त बेचीन जे रेगिस्तान में भिटकंदी वतनि। ऐं अगरि उहे दीदूं को दिलबर पसंदि त आशूरनि में बि ख़ुशियूं।

हा जी असमें सवाल आहे असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो त बिजली जी रफ़्तार हिक मिंट में केतिरी आहे। जी असमें अवां चवंदा आहियो त आलमी ॾींहुं नोट न करायो, अॼु आलमी ॾींहुं मूंखे कोन लधो पर असांखे इहो ई लभी पियो त हिक मिंट में बिजली जी तेज़ रफ़्तार केतिरी आहे। तव्हां असांखे ॿुधाए था सघो था, एस एम एस ज़रिए ॿुधाए सघो था, तव्हां असांखे फेसबुक जे ते बि तव्हां असांखे सवाल जो जवाब ॿुधाए सघो था ऐं तव्हां असांखे मोबाइल नंबर ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाब ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332231322888।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान जे नएं तजवीज़नि खे रद्द करे छॾियो। सोशल मीडिया ते जारी मुख़्तसिर पैगाम में सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान जो जवाब पढ़ियो आहे। नाले मादर ईरानी नुमाइंदनि जो जवाब मूंखे पसंदि न आयो। मामले ते अव्हां जे ध्यान जी महिरबानी। हुन खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे सदर ट्रम्प चयो ईरान खे एटमी हथियार रखण जी इजाज़त न ॾींदासीं। ईरान गेम खेॾी रहियो आहे पर हाणे खेसि घणी धर न ॾींदासीं। ईरान जो रजाउ यूरेनियम मलबे थियल आहे। अमरीका जल्द उते पहुची वेंदो। कंहिं बि शख्स ईरानी रजाउ यूरेनियम जे वेझो वञण जी कोशिश करे त खेसि धमाके सां उड़ाए छॾींदासीं। उहो कॾहिं न चयो आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे। कुझु हदफ़ बाक़ी आहिनि। ॿिनि हफ़्तनि अंदर वधीक हमला करे सघूं था।

ईरान के गडियल फौजी कमांड के सरबराह अली अब्दुल्लाह सुप्रीम लीडर मुश्तफा खमनाई से मुलाकात। ईरानी मीडिया मूजिब सुप्रीम लीडर मुश्तफा खमनाई फौजी सरबराह के नवन रहनुमाई कदम बाबत आगाह कयो। अली अब्दुल्लाह सुप्रीम लीडर के ईरानी फौज तैयारियों बाबत आगाही डिनी। कमांडर अली अब्दुल्लाह चयो त ईरानी फौज अमरीका इसराइल की कें भी कार्रवाई का मुकाबलो करण लाइ तैयार है। दुश्मन की कें भी गलती से ईरान जो रद्द अमल तेज सख्त ए फैसला तो होंगे।

0: सियासी दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमारी मसाजिद मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तियार जंग मुसल्लत कर दी। जब हमारे शेरदिल जवान मैदान कारजार में उतरे और हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुजदिल दुश्मन इस जंग का मुख्तर खुलासा बस इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। यूं महज चार ही घंटों में भारत जंग बंदी की दरखास्त पर मजबूर हो गया।
1: भारत पलगाम वाक्य जो बुनियाद बनाया था जंग मड़ी पाक फौज दुश्मन के अड़ो जवाब दिनों जो दुश्मन जंग बंदी की अपील करने मजबूर थी वो। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हक़ की जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थे इस्लामाबाद में शहीदन की यादगार से कोठायल तकरीब के खिताब। वजीर आजम जो असाजे शाहीन दुश्मन से हमलो किया दुश्मन वायड़ो थी पो एक साल गुजरने बावजूद भारत को भी सबूत पेश ना कर सको। फील्ड मार्शल एयर चीफ मार्शल नेवल चीफ हथियारबंद फौजन के जवानों के भेटा पेश करें तो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GAFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।
6: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
7: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
8: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिते मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
8: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
7: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786।
1: जी हा 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

जी हा साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि अची चुका आहियूं ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां। ऐं साईं मुंहिंजा, असांजे अॼु जे प्रोग्राम में असांजो सवाल आहे त बिजली जेका तेज़ रफ़्तारी आहे बिजली जी, उहा हिकु मिंट में केतिरी आहे। जी हा, असांजो सवाल अव्हां खां इहो आहे त बिजली हिकु मिंट में केतिरी तेज़ रफ़्तार सां हले पई। ठीकु आहे मुंहिंजा, अव्हां असांखे ॿुधाए सघो था पंहिंजो SMS ज़रिए, फेसबुक ज़रिए ऐं मोबाइल नंबर ते। मोबाइल नंबर आहे 0333221322888। ऐं साईं मुंहिंजा, ॻाल्हि कंदासीं सीज़न जी, त हर कम कार जी बि हिकड़ी सीज़न हूंदी आहे, मौसम हूंदी आहे, पर जेका शइ सीज़न न हुजे त असां हुन ॻाल्हि खे कंदासीं अणमुदायती शइ, याने सीज़न खां बिना। त ॾिसो, हिन वक़्तु जेके माण्हुनि जे ख़ुशियूं अलाह साईं हर इंसान जे घर में ॾे, असांजी दुआ आहे सभिनी भाइरनि खे। पर जेका हिन वक़्तु सीज़न शादियुनि जी जेका किथे किथे आहे, त उहा पंहिंजो मालिकनि खे त बेज़ार करे थी, पर जेके ॼाणी हूंदा आहिनि, जेके सॾु वारा हूंदा आहिनि, उहे बि परेशान हूंदा आहिनि गर्मियुनि में त असां हिन शादीअ सॾ ते कीअं वञूं, गर्मी में गर्म कपिड़ा कीअं पायूं, ऐं ॿाहिरि गर्मीअ जी लुख पई लॻे, बाहि पई वसे, ऐं वेतर जेकॾहिं माण्हू खाधा गर्म खाईंदो त वरी जेको आहे सो इंसान जे सो में अञा पाणीअ जी उञ वधीक लॻंदी ऐं माण्हू परेशान थिए पियो। पर बहरहाल जेको माण्हू शादी करे पियो त हुन जी हिकड़ी ज़िंदगी जी जेका नई शुरूआत थींदी आहे। ऐं कंहिं फिलासफर जे कौल जीअं त हर रोज़ नए सर नओ जनम वठे थी नई ज़िंदगी। ऐं तॾहिं कंहिं दानशर चयो आहे त अकुलमंद माण्हूअ लाइ हर ॾींहुं नओ ॾींहुं आहे। ऐं राति जो सुम्हण वक़्तु जॾहिं असां पंहिंजे ज़हन में हिकु खाको तयार कयूं था त सुभाणे असांखे कहिड़ा कहिड़ा कम करणा आहिनि, पर असां रुगो इहो सोचींदासीं त असांजी शादी कॾहिं थी थिए, असांजो सुभाणो कॾहिं थो थिए, इहो इंसान पियो सोचींदो आहे। नौजवान जी इहा ज़हन में ॻाल्हि पई हूंदी आहे। ऐं ॻाल्हि कंदासीं कम जी अहमियत मुताबिक़ उनखे हासिल कंदा वञूं त जेकर ज़िंदगी में हिकु आसानी ऐं तरतीब पैदा थी पवंदी आहे, तरतीब सां ज़िंदगी गुज़ारण करे हर माण्हू परेशान खां बची सघे थो। इन जे करे कोशिश कयो, पंहिंजी नई ज़िंदगी में तरतीब ठाहियो, इंडेक्स ठाहियो ऐं उन सां गॾु हलो, वक़्त जी रफ़्तार सां गॾु हलो। भले शादियूं कयो पर पंहिंजे गर्मियुनि खां पंहिंजो पाण खे बच। ही ख़ूबसूरत सहरो अव्हां दोस्तनि जे नाम जेके हिन वक़्तु शादियूं करे रहिया आहिनि, जंहिंजी सोचुनि में आहिनि, या जंहिंजी अॼु शादी आहे, उन लाइ असांजे तरफ़ां ख़ूबसूरत सहरो समीन कंवल जो आवाज़।

साईं मुंहिंजा इंसान जी ज़िंदगी में सिहतमंद रहण बि ज़िंदगी जे लाइ ज़रूरी आहे। सिहत असां पंहिंजी पाण सही करे सघूं था। गैर मयारी शयूं घटि इस्तेमाल करियूं, वक़्तु सिर खाधो वापरायूं, ॾींहं में 10 खां 12 गिलास पाणी पीऊं। पाणी जिस्म में मौजूद चर्बीअ खे ख़तम करण में मदद ॾिए थो ऐं खाधे जी ख़्वाहिश खे घटाए थो। घणी मिक़दार में पाणी पीअण सां जिस्म में मौजूद ज़खीरो फिल्ड निकाल थी वञे थो ऐं पुराणे दौर जा माण्हू तंदुरुस्त रहंदा हुआ, छाकाणि त उहे हिकु शहर खां ॿिए शहर ताईं पंधु सफ़र कंदा हुआ। जॾहिं तव्हां तकिड़ो पंधु करियो था, तव्हां पंहिंजे पाण में महसूस कंदव त तव्हां पाण में हल्काई ऐं तकड़ाई महसूस कंदव। तव्हां जे साह खणण जो अमल तकिड़ो ऐं गहरो थींदो ऐं सुठी सिहत लाइ खाधा मुख़्तलिफ़ ज़रूरी आहिनि, पर खाधनि जी चूंड खे हिकु ई बैठक दौरान महदूद करियो ऐं सब्जियूं घणियूं वापरायो। हिन मौसम में पाणी तमामु घणो पीओ ऐं पाण खे हिन गर्मीअ खां, हिन उस खां तमामु जेको आहे सो बचायो त बहितर आहे।

0: 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hemet Diamond Gloss Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemet Diamond Gloss Bleach Cream.
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 Network, सिंध की आवाज.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे में
4: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे पिते मसाने बया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
3: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा. गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
4: ऐं गायनेकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
2: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बिया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
1: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे का रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला पटी
2: ऐं गायनेकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा
3: डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
7: अॻे खां घणो नाज़ आहे अकेलो अॻे खां घणो हा करे राह में ई फिटी था सघो यार हर लका बाज़ी खटी था सघो कुझु कदम पोइते जे हटी था सघो।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी

अजी समय ने जिन दोस्तन कोशिश कई सवाल जो सही जवाब दियो पर मुझे ख्याल में हिकड़े दोस्त भी असा सवाल जो सही जवाब न इनो दोस्त हमेशा इो चवन तो असा आलमी डी जो सवाल न दियो असा को जनरल नॉलेज में सवाल दियो असा जनरल नॉलेज में सवाल नो है पर कें भी सवाल जो सही जवाब न इनो है पर कोई भी असा अवां दोस्त नाला शामिल क्यों था हनीफ शाह है गुड्डू कश्मीर का भा प्रोग्राम बुधे पो न्याज सुमरो मजार जी खानापुर शिकारपुर का अजीज सोलंगी मीरपुर खास का मीरपुर खास का खालिक लाशारी इकबाल लाशारी मीरपुर खास का ही यासमीन मलक भी प्रोग्राम बुधे पई वकार जतोई सुधीर अमन जतोई बिलावल सनावला जाकिर हुसैन जावेद जतोई पीरसेर का प्रोग्राम बुधन पाया भाईरन की वरी मेहरबानी उस्मान आराई मीरापुर का इनाम दिनो बंबरो गोठ नारो लग सखर का जोहेब कटबर जिनल आब्दीन रहमतपुर लाड़काने का नजीर मंगरो रोहिड़ी का आसफ अली चाचड़ वासफ अली बुगटी लाड़काने का कुर्बान अली खासकली झंडो मरी का हाजी इमदादुल्ला दायो सैफुल्ला दिलबर जवाद यासिर दायो लोहर कॉलोनी लाड़काने का असो भा मंजूर हुसैन जलबाणी रसूल बख्श जलबाणी मोहसन अहसन जलबाणी नंढड़ी पोपरी उन सा गड है गोठ गाजी खान जलबाणी का भाईरन की वही मेहरबानी असा कुछ दोस्त गोठ नूरसेन तुनियो बदीन का भा प्रोग्राम उनकी वही मेहरबानी मिठी थरपारकर के गोठ जगी जो तड़ खां रमेश कुमार कोहली रामचंद प्रोग्राम बुधन पाया जेकाबाद का मोहम्मद मीरण जखराणी मोहम्मद खान कुंभार वफा जमाल कुंभार अहमद खान कुंभार हालेपुटा स्टाफ मीरपुर खास का ईदगाह जतोई बखर खां मोहम्मद हफीज रहमान मुल्तान खां गुल यासीन वडी मेहरबानी भाईरन जी रेहान खान बखर खां मोहम्मद हफीज रहमान भाईरन जा लख कुर्ब त साईं मुंहिंजा खूबसूरत नगमो आहे अवां दोस्तनि जे नाम पिया कयूं गॾिजी पिया इंजॉय कयूं।

अजिया साईं जा ऐं प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि। आख़िरी लम्हनि में कुझु दोस्तनि जा अञा नाला अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। ॻोठ हरसा जी गढ़ी कोरकाणियुनि खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी, अरबेलो कोरकाणी, यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां इरशाद महेसर, एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई, निसार जतोई, नारा स्टाप सखर लग सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जूणे जो, मुनीब रहमान जूणे जो, मुजीब रहमान जूणे जो, ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, ऐं ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर ऐं अहद अकबर, शादाब चांडियो, ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्लाह जतोई, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ अहमद खान लाशारी खां नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठ मोलिड़े माशी खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली, ज़हीर अब्बास सोलंगी। त समन ही आख़िरी नगमो अव्हां दोस्तनि जी नाम।

अजिया समय न मास्टर मंज़ूर जे इन खूबसूरत नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त पहुंची पियो पांजी पुजणी ते इजाज़त दींदा पांजे मेज़बान नेमत अल्लाह जुणे जो के तेसी तई वरी हयाती रही त मुलाकात तवां सां ज़रूर थींदी तेसी तई अल्लाह निगहबान।

मार्केट में कच्चे तेल के अगन में वाद टे सैकड़ो वाद का ब्रांड कच्चो तेल 104 WTI मरबन $90 ते फी बैरल थी पो। सोशल मीडिया से जारी मुख्तसर पैगाम में सदर ट्रंप चयवा ईरान जो जवाब पढ़ो है नाले मात ईरानी नुमाइंदन जो जवाब मुख्य पसंद ना आयो। सदर ट्रंप चो ईरान के एटमी हथियार रखने की इजाजत न दींदास। ईरान गेम खेदे पो पर हाँ खेस घनी डर न डींदी। ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम मलबे हेठा दफन थियल है। अमरीका जल्द उत पहुंची वो कें भी शख्स ईरानी रचाव थियल यूरेनियम के वेझो वन की कोशिश कई तो खेस धमाके से उड़ाए छदी वो कदें भी न चाहिए त ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई खत्म थी वही है। कुछ हथ बाकी बिन हफ्तन अंदर हमला कर सकूं था।

0: अप्रैल महीने में 53,50,000 डॉलर पाकिस्तान मोकलिया। स्टेट बैंक पाकिस्तान चवणाए त रकम अप्रैल 2025 की भेट में 11% वधीक आहे। मार्च महीने में 3,83,00,000 अरब डॉलर मोकलिया व्या हुआ। शाहराह भुट्टो ईद उल अज़हा खां अॻु खुली वेंदी, टूल टैक्स पर बीणो थी वेंदो। शाहराह भुट्टो जे प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज़ सुमरो चयो आहे त शाहराह भुट्टो ईद उल अज़हा खां अॻु ट्रैफिक लाइ खोली वेंदी। मनसूबे में पुल तामीर हेठि आहे, पुल मुकमल न थी त मुतबादल रस्तो ॾेई बि शाहराह भुट्टो ट्रैफिक लाइ खोली वेंदी। मुकमल खुलण खां पोइ टूल टैक्स बि बीणो थींदो। मनसूबे में 7 अरब रूपिया ख़र्च थिया। रतदेरो में स्कूल वेंदड़ नीगर मथां ट्रैक्टर ट्राली चढ़ी वई। रतदेरो बाईपास रोड ते 8 साल अब्दुल मालिक ट्रैक्टर ट्राली हेठां जी पाड़ी फौत थी वियो। पुलिस ट्रैक्टर ऐं ट्राली कब्ज़े में वठी ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो। बेहड़ में अब्दुल अज़ीज़ जोड़े जो लाइब्रेरी 6 महीननि खां बंदि पियल शागिर्दनि एहतजाज कयो। लाइब्रेरी बंदि करणु तालीम दुश्मनी आहे। महीननि खां लाइब्रेरी बंद आहे। लाइब्रेरी खोले शागिर्दनि खे पढ़ाई लाइ पुरसकून माहौल फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
5: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
3: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
5: सुनते रहो GFM 90.4
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 03125252786
1: जी हा 2315525786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर ट्यूनिंग इन टू रियो रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट से हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं RJ रुखसार सिंध की आवाज। अरे यू कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल जब जब से सच कूल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपका और मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती वाला खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी हो सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में हम सबसे पहले वक्त की बात करेंगे तो जी वक्त हुआ जाता है 11:22 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। आप तो मानते लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बेटर देन एवर। अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस लिखो तब खेरिए थे मौजूद और तबक लिखो तो खेरिए थे मतलब

0: तेरे प्रसन्न चला ये भी माना कितनों से बेहतर
1: वो तमाम तो लोग जिन लोगों की यहाँ सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मैंने यहाँ पर रिजन सब्जा है वो बजे चाहिए उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उनके लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब उतरे हैं आमीन सुमा आमीन मेरी आवाज रिजन गलियों और शबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरी परस्तारों ये आंकड़ों और हजारों में सुनी जा रही है तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी जिंदगी गुलजार है प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि हम मुझसे करना चाहते हैं सारी बातें करूंगी लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना है इस गाने को सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे स्टे ट्यून्ड

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे में
3: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पित्ते, मसाने, बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन।

0: जो माहिर मंझंद 12 वगे का 1 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
1: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरोफिजिशियन राचर जे डी मंझंद 2 वगे का 3 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा
2: डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकारी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
3: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786
1: जी हाँ 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

थोड़ी देर पहले पब्लिश की गई है, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। 19 मिनट पहले ये पब्लिश की गई है, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं। हमारा सेगमेंट से लगाओ गाना सुनाओ, फर्स्ट कॉलर हम लेने जा रहे हैं 03000113488। हेलो

0: Hello.
1: Hello. Assalamu alaikum.
0: Hello. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum ma'am.
0: Wa alaikum assalam. Awaaz aa rahi hai meri aapko?
1: Ji ji ma'am aa rahi hai awaaz aapki.
0: Aa rahi hai. Okay. Program sun rahe hain Sagar bhai?
1: Ji ji ma'am program sun rahe hain. Program.
0: Acha zabardast program sun rahe hain. Mujhe bataiye ki kaun sa gana lekar aaye aaj?
1: अच्छा
0: तो मुझे याद थोड़ी है, दोबारा सुना दे.
1: मैं तेरे अजनबी शहर में मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में.
0: ओके वेरी नाइस. ओके किसी को डेडिकेट करना है?
1: हाँ जी मैम, डेट कब करना है? दोस्त कर रहे हैं. शौकत मुरानी.
0: जल्दी जल्दी.
1: और राधा मारवाणी और सबोज मारवाणी और प्रेमी सागर मैं और मोहम्मद हमजा अंसारी और कुर्बान अली कुमरो साहब.
0: ओके जी, थैंक यू. अल्लाह हाफिज.

0: It's time to commercial break.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं RJ रुखसार। सुर लगाओ, गाना सुनाओ, हमारा सेगमेंट। आप लोग कॉल कर रहे हैं 03000-1134-88। इसके साथ साथ आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं। सो मैसेजेस करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888-1

0: Okay, जी कॉलर है मेरे साथ लाइन पे, सो चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. जी हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: विलायत वलीदात खान से, मोहम्मद ताहिर लोन आपके साथ.
0: मोहम्मद ताहिर लोन भाई कैसे, ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. आपसे नहीं, आपके लिए.
0: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ. कौन सा गाना सुना रहे हैं हमें?
1: जी कल जैसा कि माओ का दिन था, तो उन्हें माओ के लिए अच्छा था, अब उनकी शान में पता हुआ.
0: जी जी सॉरी,
1: माओ की शान में.
0: ठीक है सुनाइए.
1: अजमताओं की
0: ओके. और कुछ?
1: और दोस्तों सलाम करते जवाहर मोहम्मद बच्चन शकोरी साहब है, जवाहर और इसके स्टेशन पर शेम खाई साहब है, और आखिर तक में जुड़े साहब को सलाम दो.
0: ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. ये थे कॉलर 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल. सो आप लोग कॉल कर सकते हैं, मुझे सुर लगाओ, गाना सुनाओ, हमारा सेगमेंट जिसको हम लोग कर रहे हैं इस वक्त. एक और कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे
2: हैं? सकर से पढ़ाया लिखा से बात कर
0: रहा हूँ. ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सक्खर से. सक्खर से,
0: सक्खर से बात कर रहे हैं. ओके, जबरदस्त गाना सुनाएंगे?
2: जी जी बिल्कुल गाना सुनाएंगे.
0: सुना दे.
2: सुन है जिंदगी सजा दी, मेरी दिल की धड़कनों में, मेरी दिल की धड़कनों में यार जू जगा दी, जिंदगी सजा दी, मेरी दिल की.
0: ये किसी को डेडिकेट करना है?
2: ये बाजी है नाइट हमारे को सारा सुना है.
0: ओके
2: भाई, पचास से जो सुन रहे हमारे प्रोग्राम भाई, ये और अन्नौर की हमारा हमारे भाई पर.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. और कोशिश किया करें कि लिमिटेड जो है ना टॉक टाइम रखा करें. गाना सुना दिया तो आप कुछ दोस्तों को शामिल कर लें, ठीक है? कुछ दोस्तों को. लेकिन जब आप दोस्तों को भी शामिल करें, उनके एड्रेसेस भी शामिल करें साथ में, तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है. सो थोड़ा सा ख्याल से, ताकि हम मैक्सिमम लोगों के लाइव कॉल्स को रिसीव कर पाएं. ठीक है, ये रहा उनका गाना, और इसके साथ हम चलेंगे आगे.

0: Okay, next caller. Hello. Hello, assalamu alaikum.
1: Walaikum salam, kaisi ho?
0: Main theek hu, kaun baat kar rahe hain?
1: Main Asma baat kar rahi hu, Mirpur Khas se.
0: Asma baat kar rahi hu, Mirpur Khas se. Asma, pehli dafa call kar rahi ho?
1: Ji, maine dusri baar call ki hai.
0: Dusri baar call ki hai, zabardast, acha
1: ho. Pehle ek dafa kaisi call.
0: Gaana sunana hai koi?
1: Gaana.
0: किसका गाना है ये?
1: ये खुशबू लगारी का गाना है, मेरे सिस्टर का.
0: खुशबू लगारी का गाना है
1: जी.
0: बहुत याद आते हो तुम.
1: हाँ
0: चले, मैं इसको सर्च करती हूँ और मुझे मिल जाता है तो मैं प्ले करती हूँ. और कुछ कहेंगी?
1: और कुछ
0: नहीं. थैंक यू, बहुत सारा ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज. और जी, हम गाना प्ले करेंगे जो कि मैं कर रही हूँ. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल आई थिंक. सो हियर कम्स द सॉन्ग. और आज का टंग ट्विस्टर, आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. परवेज ने पुरानी पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग, परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. ठीक है, ये कहना है परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, सो दैट अगला हमारा जो सेगमेंट है ना, जिसका नाम है बोलो तो माने, बोलो तो माने में हम करेंगे ये कि ये टंग ट्विस्टर बोलेंगे. जो बंदा सही सही ज्यादा ज्यादा बोलेगा जीत जाएगा. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ईरान जो नयूं तजवीज़ूं रद्द करण खां पोइ आलमी मार्केट में कचे तेल जॻहनि में वाद 3% वाद खां पोइ ब्रेंट कचो तेल 104 ऐं WTI UAE बर्बन 99 डॉलर फी पेरल थी पियो। सोशल मीडिया ते जारी मुख़्तसर बयान में सदर ट्रंप चयो त ईरान जे जवाब पढ़ियो आहे, नाले मात्र ईरानी नुमाइंदनि जो जवाब मूंखे पसंदि न आयो। सदर ट्रंप चयो त ईरान खे एटमी हथियार खां इजाज़त न ॾींदासीं। ईरान गेम खेॾी रहियो आहे पर हाणे खेसि घणी देर न ॾिनी वेंदी। ईरान जो रचाव तल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़न थियल आहे, अमरीकी जल्द उते पहुची वेंदा। कंहिं बि शख़्स ईरानी रचाव तल यूरेनियम जे वेझो वञण जी कोशिश कई त खेसि धमाके सां उॾाए छॾींदासीं, इहो कॾहिं बि न चयो आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ख़तम थी वई आहे, कुझु हदफ़ बाक़ी आहिनि पर ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।

कराची जो खानगी कंपनियों सिंधी माण्हुनि खां रोज़गार खसण लगियूं। आवाज़ उथरण ते खेन गिरफ़्तार बि कयो वियो। कराची में खानगी कंपनी कई वक़्त समूरन सिंधी ॻाल्हाईंदड़ परतनि खे निकाली ॾेई छॾी। परतनि जो चवणु आहे त कंपनी कई वक़्त सिंधी मुलाज़मनि खे टारगेट बणाए निकाली ॾिनी आहे। पुरमन एहतजाज कंदड़ परत ईस्ट सेंट्रल ज़िले जे मुख्य थाणनि ते मुंतकिल कया विया। कराची बार एसोसिएशन चूंडनि में मुबैना दांदली जो केस दाख़िल। मुबैना दांदलीअ जो केस ॿार मुलाज़िम जी फरियाद ते सिटी कोर्ट थाणे ते दाख़िल। FIR में ॼणायो वियो आहे त 7 मई ते कराची बार जे चूंडनि दौरान दांदली जी वाबिला कई वई। अणॼातल वकीलनि बिलेट पेपर्स ज़बरदस्ती खयसि, नारेबाज़ी बि कई। रोड़ीअ में औरत निंगरी खे मुबैना तौर ते अगवा करे वेलणनि सां हादसो। ज़ख़्मी निंगरी गुम। क़ौमी शाहराह ते ट्रालर मोटरसाइकिल में टकर लॻण सबबि ॾिनो जागराणी ऐं अर्ज़ मोहम्मद फौत थी विया। भारो धुर जे माण्हुनि इल्ज़ाम मञियो त जागराणी धुर जे माण्हुनि घर ते हमिलो करे औरत ऐं ॿारी खे अगवा कयो। हादसे में जवाबदार फौत थी विया। औरत नज़ीरा भारो ज़ख़्मी थी पई, ॿारी रुखसाना गुम आहे। पुलिस चवणु आहे त सुमरे मामले जी जांच कई पई वञे। निंगरी जी ॻोल्हा बि जारी आहे।

0: वरियासी टीवी प्रसारण नमूने गुमथियल नौजवान जो पैं घर की पेती में लाश हथ बनी गुमथियल नौजवान ब्रह्मान उर्फ गुडो हकड़ो जो घर में पेती में लाश हथ आयो तस भाव राजा हकड़ो छोण आए तो घर अंदर कमरे में धप जान से पेती खोली तो भाव जो लाश मिलो लाश उठने बाद भाजाई गुलनाज ए मुझे बो भाव सईद फरार थी वह शक है रहमान की जाल ए भाव कतल कर लाश पेती में बंद कर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786।
6: जी हा 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: ओके वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आरजी रुखसान. आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू. कॉल करने के लिए 03000113488 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स को हम रिसीव करेंगे. एंड आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोग मुझे कह के दिखाएंगे ये क्या हो रहा है. अब ठीक है. परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की. ठीक है, ये कहना है. और जब आप ये कहेंगे तो आप जीनियस बन जाएंगे. यू नो व्हाट, ठीक है, जो बंदा ज्यादा ज्यादा भूलेगा वो विन कर जाएगा. अच्छा, इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल चेक करेंगे कौन है, कहाँ से. हेलो,
1: सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन और कहाँ से. सॉरी, आवाज आपकी डिस्टॉर्शन आ रहा है आवाज में.
1: हेलो
0: हेलो, आवाज आ रही है मेरी.
1: जी जी बिल्कुल, खैर बात कर रहा हूँ, खैर मेरी आवाज है.
0: ओके, प्रोग्राम सुनते हैं.
1: जी जी, देश से आपका ये प्रोग्राम हम सुनते हैं, खैर मेरी आवाज है. जबरदस्त प्रोग्राम है आपका.
0: ओके, टंग ट्विस्टर सुना है आपने.
1: नहीं, ये हमारे कुछ नहीं होता है, बाकी हमारे मौलाई का गाना सुनो.
0: मौलाई का गाना सुनाते हैं जी. थैंक यू. और वही लोग कॉल करें जो कि या कहना जानते हो या कहना चाहते हो टंग ट्विस्टर. ठीक है, 03000113488 नेक्स्ट कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं. प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई.
1: हाँ, आपको तो पता होगा आपका जो मुख्य रखता है वो आपका सुन सुनकर इस्तेमाल करता है.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसका मतलब टंग ट्विस्टर सुना है. बोलेंगे
1: हाँ, वो सुना है लेकिन हमें नहीं आता ना.
0: नहीं आता
1: सवाल आप.
0: चलें, जो आता है वो बता दें.
1: हमें हम आपके शो में शामिल हुए, यही हमें आनंद.
0: हम आपके शो में
1: शामिल हैं, ये हमारे लिए.
0: चलें, जबरदस्त, बड़ी नवाजिश. और कुछ
1: और.

0: is here. Hello.
1: अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? जोया,
1: वालेकुम.
0: कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं
0: सखर में कहाँ से बात कर रही हैं? जोया.
1: जोया
0: ओके, जोया पहली दफा कॉल की है?
1: जी. जी
0: ओके, प्रोग्राम सुनती हो जोया?
1: मैं सुनती हूँ.
0: रोजाना सुनती है, जबरदस्त. अच्छा, मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर सुनाएं?
1: रिपीट करो.
0: रिपीट करूं? बोलेंगी?
1: जी
0: परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की.
1: परवीन
0: परवीन नहीं, परवेज. परवेज ने पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की.
1: ने
0: नहीं आ रहा. चलें, कोई बात नहीं. और कुछ कहेंगी?
1: रहा. आप गाना सुनाएंगी?
0: हाँ जी, बताएं कौन सा सुनना है.
1: बस कॉल भी चला दो
0: कौन सा?
1: जो आपको पसंद.
0: चले, मुझे जो पसंद है मैं वो चला रही हूँ. थैंक यू. और कुछ?
1: खुदा हाफिज़.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. एंड इसी के साथ हम 03000113488 के ऊपर बहुत सारी लाइव कॉल्स को इंटरटेन कर रहे हैं. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: सरदर्द, कैसे हो?
2: ठीक हूँ, आप बताइए कैसे?
0: जी मैं अच्छी हूँ. मुझे बताएं कि आप प्रोग्राम सुन रही हैं?
2: इसे थोड़ी ना कॉल करती हूँ.
0: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हैं. अच्छा, टंग ट्विस्टर सुनाए. बोलेंगी?
2: पहले मैं पहाड़ी पर पड़ी पुरानी पेंटिंग पॉलिश की.
0: हाँ यही है. क्या स्पीड है, मतलब आपकी तो बढ़ती ही जा रही है. कम कम कब होगी, मतलब बढ़ेगी? अभी भी बढ़ेगी आगे.
2: ये तो आपके मैंने बोलना सीखे.
0: बोलना सीखे, माशाल्लाह हंसती भी बड़ा अच्छा हो. ये वाली हंसी मुझे भी सिखा दो. क्या क्या?
2: गुड़ खा के मर गया.
0: नहीं, गुड़ खा के क्यों मरे, गुड़ खा के आप जिए. हाँ, ये गुड़ खा के क्या होता है, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब गुड़ में क्या जहर है?
2: नहीं, ज्यादा मीठे नहीं, इसीलिए.
0: चले कोई बात नहीं. इसी बात पे आपको एक गाना सुना रही हूँ. किसको डेडिकेट करेंगे?
2: मुझे.
0: किसको?
2: मुझे.
0: सिर्फ आपको?
2: हाँ, बस सिर्फ मुझे.
0: सिर्फ आपको डेडिकेट करेंगी. ओके ठीक है. और मुझे ये बताइएगा कि और कुछ?
2: अल्लाह हाफिज़.
0: थैंक यू. और हम प्ले कर रहे हैं इस वक्त, मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है जी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड हियर कम्स ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय शकीरा. हैव स्टर्न लाइ. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby, this is perfection.

Okay, it's a beautiful song. Aur hum move kar rahe hain ji. Again. And here comes another beautiful song. जो कि मैं प्ले कर रही हूँ जी ये वाला गाना हम प्ले करेंगे द ब्यूटीफुल सॉन्ग थोड़ा सा अरेबिक बनते हैं आगे गाना सुनते हैं इंजॉय करते हैं हमारा सेगमेंट बोलो तो माने देखते हैं कौन कौन टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा कह के दिखाता है स्टे ट्यून्ड जिंदगी गुलजार है

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemet Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aisi diamond skin jaisi. Hemet Diamond Glow Bleach Cream.
0: Har din har pehar, zindagi ki lehar. GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बी की जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. बी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
6: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
5: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे खां रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनोकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
6: आई गायनोकोलॉजिस्ट ए औरतन जी बीमारियन जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफताब
5: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 बजे खां शाम 4 बजे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियन जो माहिर मंझंद 12 बजे खां 1 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
6: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन राचर जे दी मंझंद 2 बजे खां 3 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
5: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली.

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज।

0: चितू लगरा लाए खुशखबरी छामा चायो था अवां जे घरन जो चितू पक्यू हुजन त कैश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा चितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती चित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
0: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा
4: 03132525786
0: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़

सुन रहे हैं नौशरो फिरोज. थैंक यू अब्दुल सत्तार. और सिस्टर हमें मास्टर मंजूर का कोई भी सॉन्ग सुनाएं प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी. ओके मोहम्मद ताहिर लोन बलोच हमें सुन रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स का. नजीर खोसो वंस अगेन, हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें और सबक भी अलग हैं. कभी किसी को देखकर ये मत सोचें कि आप महरूम हैं, आप पर भी आपके रब की बहुत सी अता है. बिल्कुल नो डाउट. क्या कह दिया है आपने नजीर खोसो वंस अगेन बलोचिस्तान से. अब्दुल सत्तार अस्सलाम वालेकुम सिस्टर रुखसार, कैसी हो? जी अच्छी हूँ. कहते हैं अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे. थैंक यू. आबिद नौशरो फिरोज से हमें कमेंट कर रहे हैं. मोहम्मद ताहिर लोंड वंस अगेन सलाम आरजी, वालेकुम अस्सलाम. उमेर अहमद फ्रॉम अल्हा वरायो पहवर, हाउ आर यू? मुमताज मौलाई को सुनना चाहते हैं. जी अच्छी हूँ. कहते हैं अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे. थैंक यू. आबिद नौशरो फिरोज से हमें कमेंट कर रहे हैं. मोहम्मद ताहिर लोंड वंस अगेन सलाम आरजी, वालेकुम अस्सलाम. उमेर अहमद फ्रॉम अल्हा वरायो पहवर, हाउ आर यू? मुमताज मौलाई को सुनना चाहते हैं.

हमारे साथ जो टंग ट्विस्टर है वो किसने अच्छा अच्छा बोला है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और गाना प्ले करेंगे एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

नहीं, तू मुझे देखे दूर से खड़े खड़े, तू सोच रही है कि आज क्यों तू मेरे साथ नहीं। अब तन दया दिल में तेरा घर नहीं, साथ होंगे सनडाउन तक सुबह वापस अजनबी। शौक में तू पी रही मुझे नशे की तश्नगी, अजीब तेरी मन तकें दगेले देती मुस्तकिल।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GFM 90.4

Okay, it's a beautiful song, and you are listening to Zindagi Gulzar here from your favorite radio station, Jigya FM Radio Network, Sindh Ki Awaaz. And इसी के साथ लास्ट लिंक में हम वापस आ चुके हैं और लास्ट लिंक में जब हम वापस आए हैं सो हम प्ले करेंगे एक अदद सॉन्ग और ये वाला सॉन्ग हम सुनेंगे एंजॉय करेंगे सो जी इसी के साथ हम चलेंगे आगे और लास्ट एंड लकी कॉलर्स को भी रिसीव करेंगे

Okay, comments mujhe receive aur Ismail Kishore kehte hain sis aap thodi si achhi ban jao, zindagi bhar hamare dilon par raaj karengi. Achha, abhi kya kar rahi ho phir main? Bahut buri baat hai, bahut buri baat hai. अच्छा, अच्छी बनने की बात हो रही है तो ये बताएं कि बुरा क्या किया है मैंने, ऐसा क्या किया है जो आपको बुरा लगा है? अच्छा, इसके अलावा नजीर खोसो हमारे साथ मौजूद है, अमानुल्लाह टागर हमें सुन रहे हैं, थैंक यू.

ओके फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है. इसका मतलब हमारी चिटचैट होगी अब शाम को, और शाम को 4 से लेके 5 बजे तक ऑनवर्ड्स आपको और मेरा साथ रहेगा और नॉन स्टॉप रहेगा इस प्रोग्राम में. कल रहेगा दोबारा से 11 से लेके 1 बजे तक. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है और बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है और ख्वाब पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लिव सिंपल बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जंग जे खात्मे बाबत ईरानी जवाब के नाकाबिले कबूल करार ॾे रद्द करे छॾियो। ईरान ते वधीक हमलन जो चिता समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान गेम खेॾी रहियो आहे पर हाणे खेसि घणी ढर न ॾिनी वेंदी। ईरान जो रचायल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़न आहे जंहिं ताईं जल्द पहुची वेंदासीं। कॾहिं बि नाहे चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्यवाही ख़तम थी वई आहे। कुझु हदफ़ रहियल आहिनि, ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था।
1: तेहरान दुश्मन आरो कॾहिं बि कंध न झुकाईंदो। ॻाल्हियुनि जो मक़सदु शिकस्त या पोइ ते हटण न आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प खे जवाब ॾींदे चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु क़ौम जे हक़नि जी हासिलात ऐं क़ौमी मफ़ादनि जो दिफ़ा आहे।

शाहराह भुट्टो ईद उल अधा खां पहिरीं खुली वेंदी, टोल टैक्स बि बीणो थी वेंदो। शाहराह भुट्टो जे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ध्यास सूमरो जो चवण आहे त शाहराह भुट्टो ईद उल अधा खां पहिरीं ट्रैफिक जे लाइ खुली वेंदी। मनसूबे में हिकु पुल तामीर हेठो आहे, पुल मुकमल न थी त मतबाद रस्तो ॾेई बि शाहराह भुट्टो खे ट्रैफिक लाइ खोलियो वेंदो।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडू सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, जीए FM 90.4। खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

मैं आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी जगह जो है ना हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। और इसके साथ साथ प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। और ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना प्रोग्राम है जो कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। ओके जी, तो यहाँ पर आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो हमें बताते जाएंगे, यानी कि अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हमें भी पता होना चाहिए। आप लोग अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोग कहाँ से हमें सुन रहे हैं ये भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको तरीकेकार नहीं पता प्रोग्राम में शामिल होने के तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे ये चीज भी बताते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ऐसा करेंगे जनाब कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, कनेक्टेड होना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज के प्रोग्राम में जो है ना आप ऐसा करिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर जनाब हमारा पेज है GA Larkana FM 88.8 के नाम से। और GA Larkana FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजिली हमारा पेज मिल जाता है। वहां पर आप लोग जैसे ही आते हैं पेज के ऊपर तो आपको हमारे प्रोग्राम की जो है ना वो लाइव पोस्ट मिल जाती है, बिल्कुल लाइव आपको पोस्ट मिलेगी जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा वाले लोगों को बताइए और बहुत ज्यादा वाले लोगों को मेंशन कीजिए ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है ना बात की जाती है और आप लोगों को ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है जो कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए है। और चाहे लड़के हो लड़कियां हो सारे लोग ही इस्तेमाल करते हैं, अपनी खूबसूरती को सिर्फ बढ़ाते जाते हैं। तो बिल्कुल जी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। उसके अलावा आज हम कॉलें भी लेंगे, बिल्कुल जी कॉल्स भी होंगी प्रोग्राम के अंदर और कॉल्स जो होंगी तो वो 2 बजे के बाद होंगे, ठीक है। तो कॉल्स पर आज आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा सा सेगमेंट होगा तो आप जरा सेगमेंट के लिए खुद को रेडी कीजिएगा। और उसके साथ साथ जो है ना, अच्छा पहले से नहीं बताऊंगी कि सेगमेंट में क्या होने वाला है क्योंकि भाई अगर पहले से बता दिया तो सस्पेंस जो है ना थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो बस आप जरा रेडी रहिएगा और उसके साथ साथ जो है ना आप हमें 8821 पर और फेसबुक पर तब तक जो है वो ज्वाइन करते जाइए। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही मजे मजे के प्रोडक्ट्स शामिल है, जैसे कि व्हाइट एश की लवली ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और व्हाइट एश की जो लवली क्रीम है ना ये आपके हर स्किन टोन के लिए, ये तो भाई ऐसा समझ लें कि आप लोगों के लिए जो है ना गेम चेंजर वाला काम करेगी आपकी खूबसूरती में। तो व्हाइट एश की लवली क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ साथ व्हाइट एश की ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है और उसके अलावा व्हाइट एश का ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए मौजूद है। और उसके अलावा क्या है, व्हाइट एश की विटामिन सी का जो फेस वॉश है ना वो भी आप लोगों के लिए मौजूद है। और साथ साथ आप लोगों के लिए व्हाइट एश का जो है ना लोशन भी मौजूद है एंड व्हाइट एश का हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है। और साथ साथ डॉक्टर पिंपल का ट्यूब भी मौजूद है जो कि व्हाइट एश वालों का है। और ये भी जनाब डॉक्टर पिंपल नाम से आज ट्यूब है ना ये आप लोगों की एक्नी के लिए है। तो अगर एक्नी को खत्म करना चाहते हैं तो आप व्हाइट एश का जो डॉक्टर पिंपल ट्यूब है ना वो जरूर परचेज कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, बहुत ही शानदार से रिजल्ट्स के साथ साथ आप लोगों के लिए हर जगह अवेलेबल करा दिए हैं। नहीं भी मिल रहे तो उसका भी हल आप लोगों को बताया जाता है कि आप नंबर के ऊपर रابطہ करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो बहुत ही इजीली मिलने वाले ये प्रोडक्ट्स, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूमात लीजिए और परचेज करते जाइए। ओके जी, हिदायतुल्लाह अहमदानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम करते हैं। लोरिस एंटोनियो भाई हमें लाड़काना से सुन रहे हैं, वेलकम भाई जान। शहबाज हमारे साथ मौजूद है, हेलो शहबाज। चाचा खालिद जुने जो हमारे साथ मौजूद है, चाचा खालिद जुने जो वेलकम, आपके कमेंट्स खुल गए, मुबारक। नजीर खोसा हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम जी। और उसके अलावा जाहिद अली बुर्दी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। आदिल हुसैन हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आशिक अली जिलबानी हमारे साथ मौजूद है, हेलो। मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है। और चाचा खालिद कहते हैं कि आज घर वालों के ताने नहीं सुने, अलबत्ता नाश्ता सामने रखा हुआ है, इस टाइम नाश्ता खा रही है, क्या बात है। और साथ साथ आप व्हाइट एश लवली क्रीम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, करती रहिए। और किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय, स्मार्ट हाजिर है अपने लबों पर स्माइल लाने के लिए, माशाल्लाह जी ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है। और वफा मीर मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है, आप हमें सुन रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं ये भी आप मुझे बताते जाइए। और इकबाल आशारी हमारे साथ साथ हैं, जनाब इकबाल भाई आपको भी वेलकम करते हैं। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने ना लाइक और शेयर करना होता है, ठीक है, तो लाइक और शेयर कीजिए। वीरू मल मेघवार हमारे साथ मौजूद है, नाइस यो, थैंक यू। उदास लड़की आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम उदास लड़की, कितनी तबीयत ओके शोके है, यस आप बताएं जरा अपना। और दर्द दिल भी आ चुकी है प्रोग्राम में, दर्द दिल क्या कहती है, अच्छा वालेकुम अस्सलाम जी, दर्द दिल आपको भी वेलकम कहती है, मैं हूँ ना
बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा

जाइए, मजे करेंगे, आप लोगों के साथ साथ बातें होंगी और आप लोगों को बताई जाएंगे जनाब खूबसूरती की राज। यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा और सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइटिश एंड द स्किन ब्यूटी शो। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, ठीक है, यहीं बैठिएगा।

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ताडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे में
3: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
2: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, गायनोकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजनि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: ॾह बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
6: जी हा, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

नाम से वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। मौजूद हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़कना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है और साथ ही साथ जो है ना मैंने ये चीज नोटिस करी है कि आप लोगों को जो है ना वो एक घंटे में एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, दूसरे घंटे में दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। ऐसा ये होगा कि सारी चीजें मिक्स नहीं हो जाती और इससे आप क्लियरली जो है ना वो चीजें समझ जाएंगे और आपको आराम से सारी बातें समझ भी आ जाएगी। तो बिल्कुल आज आप लोगों के लिए जो है मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि टाइम इस मरतबा जो होता है यानी कि पहले वाले घंटे में थोड़ा सा ज्यादा हमें लग रहा होता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो कि ज्यादा प्रोडक्ट है। तो ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में जो है आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब आप व्हाइट एज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं ना, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो व्हाइट एज का अगर आप फेस वॉश लगाते हैं, जैसे कि व्हाइट एज का विटामिन सी के साथ साथ फेस वॉश है और विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है जो कि आप लोगों की खूबसूरती को जाहिर सी बातें बढ़ाएगा और साथ साथ जो है ना और उसके अलावा आप लोगों की स्किन को हमेशा क्लियर और ब्यूटीफुल बनाए रखेगा। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, तो आप व्हाइट एज का फेस वॉश जरूर ट्राई कीजिएगा जो कि विटामिन सी के साथ साथ तैयारशुदा है। उसके अलावा अगर आप व्हाइट एज का ब्यूटी सोप ट्राई करते हैं तो व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जो है ना आपकी स्किन को हमेशा फ्रेश बनाए रखेगा, आपकी स्किन को जो है ना वो फेयर करेगा, आपके चेहरे पर जितने भी साइड इफेक्ट हैं सब चीजों से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करेगा और आपके चेहरे पर जो रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये सारी चीजें खत्म करेगा, क्योंकि व्हाइट एज का जो सोप है ना वो भी एलोवेरा और एवोकाडो से तैयारशुदा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये एक जदीद और स्किन केयर प्रोडक्ट है जो जल्द को तरोताजा और नरम बनाता है, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी पहले नंबर पर है। और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों को पता है कि ये एलोवेरा और एवोकाडो से तैयारशुदा है, दोनों चीजें आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद है और उसके अलावा आप लोगों की स्किन को महफूज बनाए रखती है। आप ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर जुड़ी चुकी है स्याह धब्बे हैं तो उनको कम करती है और आपकी स्किन जो है ना यानी कि आपकी जो जल्द है वो साफ और रोशन बन जाती है। इसमें कुदरती अज्जा है जो कि एलोवेरा है, जाहिर सी बात है, और एवोकाडो भी है। तो आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। इस्तेमाल करने से पहले आप अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा जो कि आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप से भी कर सकते हैं और व्हाइट एज के जो फेस वॉश है ना उनसे भी कर सकते हैं। तो जरूर से आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा। तो ट्राई करके देखिए फिर ही बताइए कि भाई जान आप लोगों को रिजल्ट कैसे और कितने अच्छे मिले हैं। उसके साथ साथ हम जरा मूव करते हैं मेरे फेवरेट वाले प्रोडक्ट की तरफ, आप समझ तो गए होंगे। तो बिल्कुल जी, मेरा जो फेवरेट वाला प्रोडक्ट है वो व्हाइट एज लवली क्रीम है और व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना जनाब ये इतनी जबरदस्त है, रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन के साथ साथ तैयारशुदा है जिसके अंदर 30 विटामिन कैप्सूल मौजूद है और 30 विटामिन कैप्सूल मौजूद है जैसे कि इसमें हर तरह का विटामिन मौजूद है, विटामिन B3 है, विटामिन सी है और विटामिन ई की ताकत के साथ साथ आपकी जल्द को निखार देगा और बेहतरीन आपकी जल्द को खूबसूरतियां भी देगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे कि व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि अगर आप धूप में लगा रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज का टेंशन नहीं होगा कि भाई हमारी चेहरे पर जो है ना वो धूप के मौजूद असरात आ जाते हैं, हमारी चेहरे पर जो धूप पड़ती है तो उसकी वजह से हमारी स्किन और ज्यादा जो है ना वो डल हो जाती है। बल्कि व्हाइट एज लवली क्रीम आप लगाकर अपने काम भी कर सकते हैं, धूप में भी जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन ऐड की गई है, आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा, आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करेगी और आपको हमेशा जो है ना ब्यूटीफुल लुक भी देगी। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप ट्राई करके देखिए, आप हर एज में लगा सकते हैं क्योंकि ये एक लवली फेयरनेस क्रीम है तो आप जरूर लगाइएगा। उसके साथ साथ जो है ना आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ साथ जिन लोगों की स्किन के ऊपर दाने काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक्ने का मसला है, एक्ने की वजह से आप परेशान बैठे हैं, तो जनाब डॉक्टर पिंपल नाम से ये ट्यूब आपको मिल जाता है। डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर से जाते हैं, ट्यूब परचेज करते हैं, ये एक्ने ट्यूब ही आप लोगों को मिल जाता है और अगर आप इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब तो जनाब आप लोगों को पता हो कि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है। आपके चेहरे पर अगर एक्ने मार्क्स हैं या फिर आपके चेहरे पर कोई भी जिद्दी सा दाना है या फिर आपके चेहरे पर ब्लैक पोर्ट्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो या फिर आपके चेहरे पर ऑयल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इन तमाम तरह चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए, इन तमाम तरह चीजों को आप लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों के लिए
डॉक्टर पिंपल ट्यूब मौजूद है जो कि व्हाइटिश बालों का ही है। तो डॉक्टर पिंपल नाम से आप इसे जो है ना वो परचेज कर सकते हैं कहीं से भी जाकर। आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए और वहां से नाम लेकर तलब कीजिए। और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो आप डायल कीजिए 03157990595। ये नंबर डायल कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम तर प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते जाइए। तो व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए ताकि आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकें। आपके लिए भी आसानियां, आपके आसपास के लोगों के लिए भी आसानियां। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयारशुदा है और आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हैं। तो आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा। नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करते जाइए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप लगाएंगे जबी तो फायदा उठाएंगे। तो जरूर से लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। और इसी के साथ साथ गाना लगा दिया है मैंने, तो गाना भी सुनेंगे। आपके मैसेजेस क्या कह रहे हैं आप, उनकी जाने भी आते हैं।

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, शेयरिंग जो है ना वो नहीं रुकनी चाहिए, शेयरिंग करते जाइए। और साथ ही साथ जो है ना आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए जो सेगमेंट होने वाला है वो जरा थोड़ा सा आप लोगों को पहले से बता देती हूँ, वरना आप आकर कॉल पर ये भी टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमने तो टॉपिक सुना ही नहीं है, हमने तो नहीं पता कि आप सेगमेंट में क्या कर रही हैं। तो ये चीजें जब आप टाइम वेस्ट करते हैं ना तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो अगर आप सेगमेंट पहले से समझ लेंगे तो कॉल करेंगे तो ये टाइम जो है ना वो थोड़ा सा बच जाएगा, आप सेगमेंट के ऊपर जो है ना वो मजे कर सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम का जो सेगमेंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि सेगमेंट का नाम है जनाब सच बोलना मना है। वैसे तो हम ये कह देंगे झूठ बोलना मना है, लेकिन सेगमेंट में जरा हम थोड़ा सा ऐसा उब तो कम ना कहीं थी सके तो सेगमेंट हूँ सच बोलना मना है। ठीक है, इन में मां का मुख्तलिफ सवाल पुछंदमि जो जवाब ॾींदा पर सच न हुजे उहो, ठीकु आहे, सच न हुजे उहो कूड़ हुजे। असीं वैसे त ॾिठो वञे त माण्हू कूड़ में ॾाढा माहिर हूंदा आहिनि, सो बिल्कुल ही सेगमेंट मां उन्हनि माण्हुनि खे जेको न पंहिंजे ज़हन में रखी करे ही सोचियो आहे। त ईअं बि थी सघे थो त तव्हां प्रोग्राम में अचो ऐं ही जेको सेगमेंट आहे हिन में असां बिल्कुलु मज़ो कंदासीं। ऐं मां तव्हां खां मुख़्तलिफ़ सवाल पुछंदमि, उन्हनि ते तव्हांखे जेको जवाब ॾियणो आहे उहो तव्हांखे ॾियणो आहे सच न, सही आहे, सच बोलना छो त मनाए। वैसे ये फनी वे में होने वाला है तो उसे सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, आपके एरिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा आप मुझे ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट आप पहले से सुन लीजिए ताकि ऐसा न हो कि कॉल पर आकर बोलें कि असांखे त खबर ही कोने का, तव्हांखे खबर हुजण घुर्जे, सही आहे, समझो था। पोइ तव्हां जेको आहे न अजी सेगमेंट खे फॉलो करे सघो। यहां पर अरीबा हमारे साथ मौजूद है, अरीबा कहती है ओके अरीबा आपको वेलकम हो गया जी, बहुत शुक्रिया। और कश्यप हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं, गुड आफ्टरनून, दुआ करो आज मेरी कॉल लग जाए, बेस्ट फ्रेंड आरजे सिद्रा मुस्कान आप ही। अच्छा गाना कौन सा सुनेंगे बताएं जरा। उसके अलावा हैं जी हमारे साथ चाचा खाले जुड़े जो कहते हैं कि एक सॉन्ग आपके पैनल पर काफी दिन से पड़ा तड़प रहा है। ये बात वैसे है, कितने दिन हो चुके ये गाना हमने नहीं सुना, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला गाना हम लगाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, ठीक है जी बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ हैं, क्या कहते हैं, कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो दुनिया को बताकर क्या करना, तुम खफा भी अच्छे लगते हो फिर तुमको मनाकर क्या करना, तेरे दर पर आकर बैठे हैं अब घर भी जाकर क्या करना, दिन यार से अच्छा गुजरेगा फिर तुमको बुलाकर क्या करना। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है गुलाम शबीर तुनियो भाई, ओ आप ही सॉन्ग तो बनता है आज हमारा मंजू सकरानी की आवाज में दिल में अज ओके ओके चले मां गानो समझी हम ता केड़ो गानो चयो आए, तो मां कोशिश क्या थी बिल्कुल तमाचो गानो हलाइंदा सी, हते एकड़ो मस्त गानो लगायो थम लिस्ट में सो ही वारो सॉन्ग भी बुदंदा सी, ये गानो तमाखे वणी वेंदो समझो था, न वणी त पैसा वापस सही आ।

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. हाँ जी, ये बात तो है. अच्छा, कश्यप कहती है कि आप ही आपको सराइकी आती है, अगर आती है तो मुझसे सराइकी में बात किया करें, अगर नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी. जी मुझे सिखाइए, वैसे मुझे आती नहीं है.

बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप एंजॉय करें, और साथ साथ प्रोग्राम में जी इतना प्यारा और इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको पता है कि भाई आपकी स्किन कैसी है, तो उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपने अप्लाई करना है। वैसे भी कहती हूँ हमेशा कि आप अपनी स्किन के हिसाब से ही प्रोडक्ट का इंतखाब किया करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फला इंसान ने मुझे बताया है और ये प्रोडक्ट अगर आपकी स्किन के ऊपर सूट ना भी करे तब भी आप लगा रहे होते, तो ऐसा मत किया करें। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, तो आप जो है ना वो जो इतने हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिनके ऊपर भरे होते हैं फार्मूले, वो जरा आप थोड़ा अवॉइड किया करें, जो कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाए, बल्कि आप उन प्रोडक्ट्स की जानिब जाया करें जो कि लाइट वेटेड हो और नॉर्मल से फार्मूले उसके अंदर एड किए गए हों, और वो जो है ना आप लोगों की ऑल स्किन टाइप के लिए हो। तो जो प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए होते हैं ना, यानी कि जो ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, तो वही प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल किया करें। इससे ये होता है कि भाई आपकी स्किन जो है ना वो हमेशा प्रोटेक्ट रहती है, आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहती है और आप हमेशा ग्लो करते रहते हैं। तो व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम है जो कि बिल्कुल लाइट वेटेड फार्मूला है, ऑल स्किन टाइप के लिए है, लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर उससे भी ज्यादा हम बात करें व्हाइट एज लवली क्रीम की, तो ये तो भाई कमाल का प्रोडक्ट है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये नाइट में भी आप लगा सकते हैं, डे में भी लगा सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, काम पर आप स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, तो हर एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। कितना ही कमाल का प्रोडक्ट है, तो जरूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही प्यारा गाना है, और साथ साथ ये हमारे साथ मौजूद है बाजी। क्या हाल है आपके बाजी? अल्लाह आपको सलामत रखे। सिकंदर अली जावरी हैं, अरसलान अली जावरी हैं, कोट रोशन अली जावरी अली आबाद से हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। नूरे सिंतनियो भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम नूरे सिंतनियो भाई जान। चाचा खालिद कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, ओके अल्ट्रा ये गाना आपने मुझे डेडिकेट कर दिया। चलिए हम सुनेंगे फिर सोचेंगे कि ये मुझे डेडिकेशन के लायक गाना था भी या नहीं। अच्छा मीरपुर खास से अब्दुल अमहर कहते हैं और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मैंने परचेज कर ली है, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे बताइएगा फिर आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ है, तुम जितनी बार रूठोगे हम उतनी बार मना लेंगे, ये दोस्त बस तुम अपनी के बाद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है। तो भाई को वेलकम करते हैं। इरम वालेकुम अस्सलाम कहते मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, शो नाइस है, थैंक यू वेरी मच इरम। हाँ जी सिया मान भी जा, अब लगा व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स ताकि खूबसूरत हो जाएं आप भी। अच्छा व्हाइट एज के प्रोडक्ट की मैं जितनी बात करती हूँ ना, मतलब वो थोड़ी बात करती हूँ, हाफ हिस्सा बात करती हूँ, अद्धा अन्या हिस्सो रह लाए, तो तमाम अन्या खूबसूरती जो रुका ना अध स्टेट से पहुंचायो मां चाया थी, तो तमाम जगह सब माणो मुखे बुधो पया तमाम सब जो ना व्हाइट एज का प्रोडक्ट इस्तेमाल कोई तमाम के पान बुधाए तो बाजी असा के हेड़ो रिजल्ट मिलियो अव, तो तमाम जरूर ट्राई करे दिसजो। और संजय जयपाल भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। आयुष मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आवाज से वेलकम जी। अच्छा महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, कहते गुड होस्टिंग, ग्रेट प्रोडक्ट्स बाय व्हाइट एज एंड जी स्किन, वेलकम करते हैं महर इरफान सियाल आपको भी। हाँ जी आप बिल्कुल ना जाइएगा कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, तो आप बैठे रहिएगा और सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: तालुक आहे औरत खे पीउ खे मारण जी धमकी ॾेई आपघाती हमले जो चयो वियो. दहशतगर्दनि जो बलोचन सां को बि तालुक न आहे. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग जे खात्मे बाबति ईरानी जवाब खे नाक़ाबिले क़बूल करार ॾींदे रद्द करे छॾियो. ईरान ते वधीक हमलनि जो चिताव. समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान गेम खेॾी रहियो आहे पर हाणे खेसि घणी ढर न ॾिनी वेंदी. ईरान जो रचायल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़न आहे जंहिं ताईं जल्द पहुची वेंदासीं. कॾहिं बि नाहे चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्यवाही ख़तम थी वई आहे. कुझु हदफ़ रहियल आहिनि. ॿिनि हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था. तहरान दुश्मन आलो कॾहिं बि कंध न झुकाईंदो. ॻाल्हियुनि जो मक़सदु शिकस्त या पोइ ते हटण न आहे. ईरानी सदर मसूद पेज़िशियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.

0: brought to you by
1: जडेल रखंदी आहे त सिहत नसलन ताई हलंदी आहे ही फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो
2: छा अहां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो हाणे वक़्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल जेका ॾे कुदरती निखार साफ नरम ऐं रोशन चेहरो पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क महसूस करियो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
3: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
4: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन चोवीह कलाक मौजूदु हूंदा
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां

0: वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा।
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरोफिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा।
2: डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03125252786।
8: जी हा 2311-2525-786
7: जीओ नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: बिल्कुल डी स्किन का फेस वॉश, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन की ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन की ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताते चलो, यहाँ पर जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती सिर्फ बढ़ेगी। और इसके अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है, माइक्रो बीट्स भी मौजूद हैं, और इसके अलावा ये आप लोगों को सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से जो है ना बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को कहीं से भी जाकर ना आसानी से आप जाकर परचेज कर सकते हैं, इजिली आपको मिल जाएगी। और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ दो रातें आप लगाते हैं, तो आप लोगों को वाज़े नताए जो है ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जदीद आपकी जो है ना स्किन जो है वो खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जदीद अज़ा शामिल है। अगर आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं आजकल, तो ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है ना, ये उन तमाम तर चीजों को देखते हुए तैयार की गई है। क्योंकि ये जो एक ऐसी क्रीम है जिसके अंदर आप लोगों को विटामिन ई बीट्स मिल रहे हैं, और ये जो विटामिन ई बीट्स होते हैं ना, ये आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को जो है ना डीपली क्लीन करने के साथ साथ डीपली मॉइस्चराइज करने के साथ साथ डीपली ग्लोइंग भी बनाते हैं। तो आप देखेंगे, आपको महसूस होगा ये चीज कि आपकी स्किन जो है ना वो अंदर से ग्लो होती जा रही है। और आप जब दो रातें लगातार इस्तेमाल करते हैं और वैसे ही आप लगाते जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो आपके ऑल स्किन टाइप के लिए है, लड़की लड़कियां सभी इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को। जब हम डी स्किन फेस वॉश की बात करते हैं, ओके जनाब, तो ये जो डी स्किन का फेस वॉश है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा कमाल का प्रोडक्ट है। ये जब आप देखते हैं तो इसे आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना वाकई इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और साथ में डी स्किन का जो फेस वॉश है वो लगाते हैं, इसके अंदर सीरम मौजूद है और आपकी स्किन को जो है ना वो क्लीन बनाता है, आपकी स्किन को जो है ना हाइड्रेट करता है, और आपके चेहरे पर जो है ना वो जितनी भी चीजें इस तरह की आ जाती है जैसे कि ऑयल वगैरह हो, उसको भी कंट्रोल करेगा। और आप लोगों के चेहरे की स्किन जो है ना अगर ड्राई रहती है काफी ज्यादा, तो ड्राइनेस जो है ना वो भी कम कर देगा। तो आप जो है डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कीजिएगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और क्लीन क्लीन हो जाएगी और ग्लोइंग हो जाएगी। तो ट्राई करते रहिए, खूबसूरतियां हासिल करते जाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। ओके जनाब, से प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों की कॉलिंग का सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे। और कॉलिंग सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले ये चीज आप लोगों को बताती चलूं कि आज के प्रोग्राम में जो कॉलिंग सेगमेंट होगा उसमें आप लोगों के लिए सेगमेंट है सच बोलना मना है, ठीक है। और सच बोलना मना है सेगमेंट में मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ में सवाल पूछूंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो मुझे जवाब देना है वो सच नहीं होना चाहिए। अब आप इसे अंदाजा लगा लें कि मैं आप लोगों से सवाल कैसे जो ना वो पूछने वाली हूँ, इससे जो है ना वो हम ये चीज समझ पाएंगे कि आप सच बोलने में एक्सपर्ट हैं या फिर झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। कई बार दफा ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग सच बोलते हैं लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि ये अगला इंसान सच नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं लेकिन लग नहीं रहा होता कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो इतनी महारत से झूठ बोल रहे होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सेगमेंट है जनाब सच बोलना मना है, और यहाँ पर जो है हम कॉल्स आप लोगों की पिक करने वाले हैं। कॉलिंग नंबर है 0332132288। आप भी कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर ऑन हो चुका है और लाइन बिजी होने वाली है, सो आप ट्राई कीजिए। फर्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसे सगर मौजूद है?
1: शिकापुर खरबाजी जमालदीन भाई।
0: ओके जमालदीन भाई, छाला प्रोग्राम बुधो पे अच्छा मुख्य बुधा तो तुम्हारा सेगमेंट चलाए तैयार आयो सेगमेंट बुधो आ अच्छा सेगमेंट यो बात अज तमाजे को सवाल पुछंदम एक मानू का एकड़ो सवाल हों तो मुख्य उन जो सवाल जो जवाब जो है वो दींदा तो तमा कोशिश कर तो वो सच न हो जे। अच्छा सो तमा खामा जो सवाल पुछा थी वो सवाल अजो यो थी तो मुख्य बुधा तो कहीं चोरी के बेजी प्रोडक्ट इस्तेमाल कई है तमा कदें चोरी के बे मानू जी प्रोडक्ट इस्तेमाल कई है वो प्रोडक्ट केड़ी भी थी सके थी कदें ता के चोरी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो आ तमा तो हार जी होया ता तो सच गाल आया कूड़ गालण होयो
1: कूड़ के
0: गालण आ ना मजो तो चले ही नो ना
1: हाली बाय सच बोल रिया
0: चलो दोस्तन की याद कंदा या बस गुड बाय ओके वालेकुम अस्सलाम। जमालुद्दीन भाई हमारे साथ मौजूद है, शिकारपुर से कॉल करते हैं माशाल्लाह। और इनका आज गाना हमने नहीं सुना, बस मैं चाह रही हूँ कि आज हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स पे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप जो है ना कोशिश करें कि आप जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब आप थोड़ा सा ना झूठ वाला दीजिए, तो सच बोलना मना है। सेगमेंट है, हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉल पे करेंगे। कॉलिंग नंबर आ है 0332-1322-8 नेक्स्ट कॉलर डिसों के रसगढ़ मौजूदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: के रसगढ़ मौजूदा
2: दुआ
0: छाला खुश आयो दुआ।
2: हां ठीक है साउंड
0: आए। अल्हम्दुलिल्लाह मां भी बिल्कुल ठीक आया। प्रोग्राम बदो प्या दुआ। अच्छा
2: अलाई
0: छा छे हेलो या भी गाल मुख्य बुधा तो तवहां प्रोडक्ट बता है ना वाइट एज या फिर डी स्किन जो कोई भी प्रोडक्ट हिमल ताई या सिर्फ अन्या बुधो था। चलो चलो वठ जो बिल्कुल ही मुख्य ता मतलब सवाल पूछा तवहां खा सेगमेंट में जेको बुधो आ सेगमेंट। अच्छा सवाल तवहां जला इयो आ त ता मुख्य बुधायो छा तवहां जी जेका खूबसूरती आ वा नेचुरल आ है। तुम्हारी खूबसूरती माना नेचुरल ना है। ओके तमाम मतलब मार्शल आयला ही होशियार आयो केड़े दोस्तन के याद करना दुआ।
2: दुश्मन ताने प्रोग्राम बनना नाम तो सुना
0: दुश्मन है। ये केड़ा दुश्मन है जेके जो प्रोग्राम था
2: बुधो दोस्त हो या ने प्रोग्राम तो हाले तो शांति है।
0: वाह वाह माना तरक्की थी भैया।
2: चलो
0: जी
2: आ पानी स्टूडियो वाले से तो गुलदार से प्रोग्राम चला था लेकिन
0: हलाई था टाइम
2: मैं कौन कर रहा है
0: ना लंदो ना। चलो दिसन आसी तो छों तो ले
2: ठीक है।
0: चलो दोस्तन की याद कंदो या बस बस हो गई हमारी। चलो थैंक यू सो मच दुआ तुम कॉल कई बात से। जी जी
2: हेलो
0: जी जी छा पूछा
2: न
0: बस हाँ दोस्तन के याद कर तकर न तभी कॉल वठूं।
2: अच्छा
0: चलो थैंक यू सो मच दुआ से सगर मौजूद दुआ या दुश्मन असा के बदन साथ दुआ या दुश्मन चाल तो खुश आयो आई वाइट एज क्रीम लगाए रो सही तां भी सोना थे बाबा दुश्मन की भी पूरो हक है। ओके जी सो बिल्कुल तुम भी ट्राई करी सको था कॉल। कॉलिंग नंबर माशाल्लाह असो ढो मसरूफ हों सो कॉलिंग नंबर है 0332-1322-8 बिल्कुल तुम कॉल करी सको था लगे तो इतने नेटवर्क जो वो सफा जाम थी वो। ओके बिल्कुल तुम सब कॉल कर अज मैं चाहें थी तो तुम इलाही का वी जो है कॉल वम इलाही मतलब कॉल वम समझो था थोड़ो मुझे सिंधी थोड़ी एडे ओडे थी। ओके सो ही वारी कॉल अचे पई ही वारी कॉल जो मैं सोचा पी तो वा ठीक है दिसू तो केर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम। केर से गड मौजूद है
1: वसीम
0: तोकीर
1: वसीम अली
0: हकीम अली
1: वसीम
0: तो चयम न
1: जी जी
0: चाल वसीम ठीक आयो जी मां भी ठीक आया। मुखे इयो बुधायो तो तमा सने प्रोग्राम बुधो प्या
1: बिल्कुल बुधंदा डेली
0: बुधंदा आयो आई मुखे यो बुधायो तमा जे एरिया में करीबी जनरल स्टोर ते वाइट एश या डीस किंजा प्रोडक्ट मिलन था कोन
1: बिल्कुल मिलन था
0: वटा अथव
1: नन
0: अन्या न वटा अथव छोन वटा अथव
1: इंशाल्लाह।
0: चलो पो ये चाओ न त वठंदा से। अच्छा तमा का सवाल पूछा सेगमेंट में जेको तमा बुधवा सेगमेंट कौन बुधवा। अच्छा मुखे तमा यो बुधायो त तमा कदे का क्रीम इस्तेमाल कईया न कईया माना तमा कईया आई तमा केड़न दोस्तन के याद कंदा चाचो खाले तो बुधन आऊ न बुधन तो केर बुधन असो प्रोग्राम बस चाचे खाले तो के चलो चाचे खाले तो के सलाम देना तमा वसीम तमा जो मोहब्बतू तमा प्रोग्राम बुधो पया लाड़काने का तमा संगे जॉइन कयो आई बिल्कुल तमा भी कॉल करी सको तो कॉलिंग नंबर आ है 0332-1322-8 नेक्स्ट कॉल वठू था दिसू था केर कॉलर असे सगर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: केर असे सगर मौजूद है
3: लाड़काने खां
0: ज़ुहेब कॉल कया लाड़काने खां मुखे बुधायो ते तां सने प्रोग्राम तो पिया ज़ुहेब
3: या प्रोग्राम बुधो ना हूं
0: प्रोग्राम बुधो ना आई आवाज आ ताले लाई शोर बार तव छ नंडड़ा नंडड़ा
3: हां हाने खामोश थी गई
0: चलो मुखे बुधायो तां सने प्रोग्राम दंदा आयो
3: या बुधो ना हूं तो सल सल डेली बुधो ना हूं
0: अच्छा प्रोग्राम नो नालो अचे तो तवां के
3: जी
0: केड़ो बुधायो
3: डेली बुधो ना हूं
0: चलो डेली बुधंदा अदी जी कॉल में डाडो आवाज हो मथे में सूर पे अदा माजरे सही आ बारन के चुप कराए पो कॉल कयो अगर खा निकरी करे पो कॉल कयो कॉलिंग नंबर आ 0332132322 ही वाली कॉल वठू था दिसु तो कॉलर के रस सगर मौजूद है हेलो
4: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम अज काडा आयो चंडर निकतो आए
4: बस बड़े शिकारपुर का निकतो
0: माशाल्लाह शिकारपुर में आयो ना या मना जी जी
4: भैया
0: अल्हम्दुलिल्लाह ताम दा ठीक आयो
4: अल्लाह का जाय सन सुना तो वाले को ना
0: हां छो ना सुना तम बाकी ये छो चयो तो यो काडन चंडर निकतो आ
4: मैं भी पता बताय सको ता माकीर
0: ता फारूक भाई साल का थोड़ो घट थे किथे घुमायो बुधाय तो सही राज़ी कयो बजट भी राज़ी थी वेंदो मूंखे ॿुधायो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो
4: हा पुटु अच्छा बच्चा ही जो तुम पर डे आंदो वाइट जो नाले से भला यो स्किन वाइट ऑरेंज ठहियल आ या आनंद पर जो
0: शायद ये ही आ
4: अच्छा स्किन वाइट ऑरेंज ही आ
0: जी जी
4: तो पुटु मां त इन जी स्किन वाइट यूज कंदो आ मां तो न कदी अगर साग मिली त बताई न
0: चलो पर हाने ता वाइट एज भी लगाए जो न जो प्रोडक्ट तव है उन का वधिक भलो तव
4: अच्छा बच्चा
0: जी
4: मेरा सब ठीक न
0: सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ता बधायो खे लगो पियो आ
5: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
6: Hame Diamond Glow Bleach Cream जो deep clean करे और दे चार गुना brightness चमक ऐसी diamond skin जैसी Hame Diamond Glow Bleach Cream
5: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network सिंध की आवाज
7: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
8: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन ता जेमे
9: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने ब्या मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
8: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
9: गायनेकोलॉजिस्ट औरतन जी बीमारियन जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ्ताब
8: डॉक्टर हमीदुल्लाह पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वगे खां शाम 4 वगे ताई डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियन जो माहिर मंझन 12 वगे खां 1 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
9: डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे डी मंझन 2 वगे खां 3 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
8: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारे
2: 30 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।

0: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
6: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में ये चीज तो वाजे है कि आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले। ओके जी, तो अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमें बता दिया करें। आप लोगों की खूबसूरती के लिए हैं और आप लोगों के हुसन को बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती रहे, तो भाई जान आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स से आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो अज्जा मौजूद हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं। तो आप ट्राई करके देखिएगा, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूमात लीजिए, आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो नंबर होगा ना उसे आप डायल करेंगे, और नंबर कौन सा होने वाला है तो जनाब नंबर है 03157990595। ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आप इजीली परचेज करते जाइए। ओके जी, तो प्रोग्राम में यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, ये आप लोगों को मैंने पहले बताया तो बिल्कुल वही तरीकेकार है कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना, आप रात के टाइम, ऐसा है कि जो ब्यूटी क्रीम होती है ना, वो जाहिर सी बात है वो नाइट क्रीम होती है, तो आप उसे रात के टाइम इस्तेमाल किया करें। लेकिन रात के टाइम इस्तेमाल करने से पहले जो है ना, आप अपना फेस वॉश लाजमी कर लिया करें। अगर आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल जी आप अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कीजिए और उसके बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर रात के टाइम अप्लाई कीजिए।

ओके जी, तो हम पता नहीं कहाँ थे। ओके जी, तो टाइम जो है मैं देख रही हूँ तो टाइम बहुत ही जल्दी और तेजी से गुजरता जा रहा है। आप लोगों के मैसेजेस भी हैं, उनको भी हम शामिल प्रोग्राम रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है ना पैनल पर कुछ मैसेजेस हैं तो उनको जरा मैं जल्दी से रीड कर लेती हूँ। ये हमारे साथ मौजूद है इमरान अली बिरोही लाड़काना से, लिखते हैं, तुम जितनी बार उठोगे हम उतनी बार मना लेंगे, ए दोस्त बस तुम अपनी मोहब्बत में किसी को शामिल मत करना। ये बिल्कुल सही बात, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। और ये हमारे साथ कश्यप कहती है, कश्यप आप ही ये गाना सुनाइएगा। जी जी बिल्कुल गाना सुनाएंगे, आपको नाराज नहीं करेंगे, नाराज तेकू नहीं करना। और कश्यप कहती है आप ही तेकू मेकू क्यों नहीं आती आपको, भाई तेकू मेकू नहीं आती मुझे, चावन आता है बस, और मैंने कोशिश की है शायद पर मैं सीख नहीं पाती हूँ, और शायद ऐसा है कि मैंने दिल से कभी ट्राई नहीं किया। और इसके अलावा जो है, अच्छा ये सलाम मिस यू, मैं आके फरमान पर वाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ ईद से पहले ओके। इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, ओके जी ओके, बिल्कुल आप मेरे फरमान पर यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर रिजल्ट्स ना मिले तो मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको बताऊं कि आप कहां पर गलती करें कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इरम कहती माँ घोर थिया माई डियर दोस्त जानी सिद्रा, व्हाइट एश एंड डी स्किन के प्रोडक्ट्स देखने में तो बहुत नाइस है जी, बिल्कुल देखने में भी नाइस है और लगाने में उससे भी ज्यादा नाइस है, तो आप ट्राई कीजिएगा। कश्यप कहती यहाँ पे मेरी कॉल नहीं लग रही, ट्राई कीजिए मेरी जान लग जाएगी, आपने अच्छा हुआ कॉल्स का याद दिला दिया। और ये हमारे साथ आज सिद्रा, आप कभी ना अपनी आवाज में हमें कोई गाना सुनाएं, हमारी ख्वाहिश है। लाड़काना से इमरान अली बिरोही भाई, मैं अपनी आवाज में आपको गाना सुनाऊंगी लेकिन कब सुनाऊंगी ये मुझे नहीं पता। जयपाल भाई कहते हैं, जयपाल का सलाम, हाउ आर यू, वेरी नाइस लवली ब्यूटी क्रीम। और कहते हैं एंड सोप गुड ऑल प्रोडक्ट्स व्हाइट एश एंड डी स्किन एंजॉय ब्यूटी स्किन सुपर रिजल्ट्स, आप सब भी ट्राई करें एंजॉय, थैंक्स अदी जी। जयपाल भाई आपको शुक्रिया कहते हैं वेलकम के साथ साथ, आप हमारे साथ मौजूद है, बताएं जरा कौन सा प्रोडक्ट आपने ट्राई करके देखा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर कॉल की जाने बातें हैं, कॉल्स लेंगे जी, लास्ट लिंक है और टाइम इतना तेजी से गुजरता है तो कॉल्स की जाने बातें हैं ज्यादा से ज्यादा। आज मैं ना ये सोच रही थी कि मैं बहुत ज्यादा वाली कॉल्स लूंगी लेकिन ऐसा है कि टाइम इतना तेजी से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।

0: Hai program, dónde vives, Sanju?
1: रहमतपुर
0: में ना ही आई था, पुछा करायो आ? चलो तांजे लाए असा रहमतपुर में अवेलेबल कराइंदासी, शा याद कंदो तां भी। चलो जबरदस्त, ठीक आ, बिल्कुल अवेलेबल कराइंदासी। आई मुता ता मके यो बुधा ता ताके सने प्रोग्राम रे नालो छी दो। हेलो अदा काडे बजी वयो दो बस यो बुधाना ता रहमतपुर में कोन थी मिलेवा, हाजिर सई अवेलेबल कराइंदा बे हुकुम कयो। Okay, calling number 0332123228 next caller. Hello, assalamu alaikum.
2: Waalaikum salam. Shah Colony Kambar Khan sana ve Gopang to bolaya.
0: Hello Gopang, assa sagad maujood hai program udo pya?
2: Ji ji bilkul udo par program.
0: Acha mukhe badhayo to tumha program to nalo ache to tumake. Okay, zabardast. Istemal karne bare mein socho to. चलो सेगमेंट बुधो अव अज सच बोलना मना अव सच गाइंद तो मना फांसी वो सवाल पुछा तक अच्छा टॉपिक सवाल यो आए कहीं तेजे अखी जहा डार्क सर्कल लिकाने लाइ सनग्लासेस यूज क्या तुम बार वही ले के सनग्लासेस पाता है पर हालांकि सच वे तखी के हेठा डार्क सर्कल्स अची वह ता यूज क्या है माने या हाय या नहीं
2: जरूरत कोई ना टॉपिक के फॉलो करो।
0: वेरी नाइस केड़न दोस्तन की याद करना
2: आसान जो प्यारो नौजवान साथी प्रोग्राम बुझे तो उनके खोर सारा सलाम
0: वालेकुम
2: अस्सलाम जो भाई ना इतला बुझे तो उनके खोर सारा सलाम जे के सब बुझे तो आगे तो टीम के खोर सारा सलाम।
0: चलो थैंक यू सो मच ता प्रोग्राम में कॉल कई मोहब्बत हूं आवाज हूं
2: सब बाय टेक केयर
0: ओके थैंक यू।

0: अॼु ई स्टार्ट कयो अथव प्रोग्राम जो नालो वग़ैरह तव्हां ख़बर आहे कहिड़ो प्रोग्राम कयां पई? अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां जेको आहे त अच्छा डेली हाणे मुंहिंजो प्रोग्राम हुजो जीअं तव्हांखे ख़बर पए त भाजी कहिड़नि प्रोडक्ट जे बारे में ॿुधाए थी। अच्छा तव्हां खां हिकिड़ो सवाल पुछां, तव्हां कॾहिं पंहिंजी ज़िंदगी में क्रीम इस्तेमालु कई
1: आहे?
0: इलाही कयूं अथव या थोरियूं कयूं
1: अथव?
0: ॿ टे कयूं अथव। पोइ ईअं आहे तव्हां सां कॾहिं त तव्हां सोचो त जेका हीअ क्रीम मूंखे असर ॾिनो आहे त बसि इहा हमेशह लॻंदव, वरी तव्हांखे को ॿियो ॿुधायो त हीअ क्रीम ॾाढी भली त पोइ तव्हां हुन क्रीम जे तरफ़ मूव कयो आहे त न हाणे हिन खे छॾे असां हीअ लॻाईंदासीं? पोइ ॾिसो ईअं ज़िंदगी में चेंज बि ॾाढो ज़रूरी हूंदो अथव, तव्हां चेंज करे ॾिसजो हुन क्रीम खे। ज़रूरु इनशाला इनशाला। कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो? जी जी ओके, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई। ओके जी राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और वाकई जिंदगी में चेंज होता है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम भी एकड़ी क्रीम ते टिकी बैठा हो तो ये नक्यो बाबा मैं तक बुधा दी जिन क्रीम के बारे में जरूर ट्राई कर दो। अगर तुम जो ना चाहो था बाबा अस ब्यूटी क्रीम हाँ गर्मी में ना हणी सू तुम्हारी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो तुम्हारे व्हाइट एस की जो लवली क्रीम अव ना वह सफा परफेक्ट अव तुम जरूर ट्राई कर दो। हि वाली एकड़ी बस लास्ट कॉल वी डूँ लास्ट कॉलर के गड़ मौजूद है। हेलो असलम। हेलो हेलो ओके जी ये लास्ट कॉलर थे लेकिन हम ये वाली कॉल पे करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। केरे से सकर मौजूद आ?
2: अलीसा गलाया
0: थी। अलीसा बीर कॉल लगी हुई तमाजी शालत व खुश आयो। अच्छा अलीसा मानू पुछन पया त अलीसा जी कॉल किए लगी वेंदी आ रोज रोज उनन के ट्रिक बुधायो।
2: बस लगी वेंदी आ ट्राई कंदा आयो।
0: ट्राई कंदा तो लगी वेंदी आ ब्या मतलब की ब्या ट्राई नाइन कंदा जन उनन जी पुछो हुंदी लगे।
2: बिल्कुल हो बताए कंदा आन पर किस्मत जी गल हुंदी
0: आ न काई ट्रिक त हुंदी आ मखे लगे तो
2: हां
0: मखे लगे तो का ट्रिक आ है
2: ना ना को ट्रिक तले।
0: चलो मखे बता तो तमा प्रोडक्ट बता कोई भी जके बुधाया थी आना सोचू पया छा वरतो तव अन्या ना वरतो आ। मुखे यो बुधायो अलीसा सवाल पुछा तो मुखे यो बुधायो तो तमा कदे का क्रीम लगाई हुजे
2: वरी
0: कदे भी का क्रीम कोन लगाई तव कदे भी न लगाई तई या का क्रीम डिसी करे ताजी दिल सही हुजे त ई जे करे या क्रीम आहणा इग्नोर न कयो बाबा ये ॾाढी भली अथव क्रीम बिल्कुल निदा खे वठी ॾिजो तव्हां वाइटिश लॻाइजो वरी डी स्किन जेका आहे उहा वरी निदा लॻाईंदी सही आहे ओके कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदो
2: जेके बि छोकिरियूं
0: ओके थैंक यू सो मच अलीसा तव्हां कॉल कई माशा अलीसा सां ॻाल्हाए करे इलाही ख़ुशी थींदी आहे। अलीसा असांजी इलाही सुठी माशा लिसनर आहे टाइम सफ़ा तेज़ी सां गुज़रंदो वञे पियो ऐं हा वाकई तव्हांजे कुझु माण्हुनि जी जेका आहे क़िस्मत थोरी ख़राबु आहे थोरी ख़राबु अथव पर ख़ैरु आहे रोज़ न कुझु माण्हुनि जी क़िस्मत ख़राबु हूंदी आहे कुझु माण्हुनि जी घणी कुझु माण्हुनि जी थोरी पर जंहिंजी थोरी हूंदी आहे न उहे बि ॾुख न कनि छो त बाबा दुआ कंदा कयो नेठि तव्हांजो बि ॾींहुं ईंदो तव्हांजो बि वारो ईंदो अपना टाइम आएगा ज़रूरु।
3: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: विच ओभर में ईरान जी कामयाबियूं खिते ऐं दुनिया में नए निज़ाम जो रस्तो खोले रहियूं आहिनि। नार वारनि समुंडनि ते रुगो ईरान ऐं पारेसरनि जो हक़ आहे। आबराह हरमुज़ जे इस्तेमाल जे लाइ दुश्मन खे मिलियल बुनियादनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई وچ اوبر ابن حرمز بابت اسٹریٹجک تجویزوں جاری کرے چھڑیوں مصطفی خامنائی چھو ہے تو خطے میں عدم تحفظ جو وڈو کارن امریکی فوجن کی موجودگی ہے امریکہ خطے کے ملکن کے سلامتی کی ضمانت دین کا بھی قاصر ہے نار عمانی سمند سے اساں پارسرین جو گڈل حق ہے نار میں دشمن پردہن کی کا بھی ضرورت نہ ہے ابن حرمز سے نو نظام لاگو کرے خطے کے عوام کے سکون ترقی کی ضمانت دے سکے تھی ابن حرمز سے نئے نظام کے نتیجے میں حاصل معاشی فائدن سے ایرانی عوام بے خوشی جو اظہار کرو

0: तहरान दुश्मन ॾाढो करे बिना कंध झुकाईंदो ॻाल्हियुनि जो मक़सदु शिकस्त या फोइते अटण न आहे। ईरानी सदर मसूद पश्तियान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प खे जवाब ॾींदे चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु क़ौम जे हक़नि जी हासिलात ऐं क़ौमी मफ़ादनि जी दिफ़ा आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका खे मुनासिब तजवीज़ू ॾिनियूं हुयूं। ईरान जाइज़ हक़ घुरी रहियो आहे। असांजा मुतालबा मुनासिब ऐं ज़िमेवाराना आहिनि। विढ़ण ते मजबूर कयो वियो त ईरान ज़रूर विढ़ंदो।
1: सदर ट्रंप पारां ईरान जूं तजवीज़ूं रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थी वियो। 3% भाथ ब्रेंट तेल $105 फी बैरल थी वियो। अमेरिका में विकिरो थींदड़ कचो तेल बि महांगो फी बैरल $99 खां वधी वियो। आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में वधीक वाधा वारो इम्कान बरक़रार।
0: अमरीकी सदर 13-15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो। बीजिंग पारां तस्दीक चीनी परॾेही तर्जुमान मूजिब सदर ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। अमरीकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे।

0: पंजाब के जिले टोबाटेक सिंह में एमपीए की उताक से फायरिंग, चार जना कतल, एमपीए सरदार अयूब समेत टे जना मरणी, एमपीए के जख्मी हालत में लाहौर मुंतकिल किया गया। पुलिस के हथियारबंदन जो टारगेट एमपीए हो, वधिक जांच कर रहा है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे में
7: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
6: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे का रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियों जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
7: आई गायनेकोलॉजिस्ट है औरतों जी बीमारियों जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफताब,
6: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंजन 2 बजे का शाम 4 बजे ताई, डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियों जो माहिर मंजन 12 बजे का 1 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा,
7: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन राचर जे दी मंजन 2 बजे का 3 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125257 86।
1: जी हा 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे में
2: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने बिया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 बजे खां रात 8 बजे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा, गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ्ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 बजे खां शाम 4 बजे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 बजे खां 1 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा,
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 बजे खां 3 बजे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद,
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली। खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 3:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream. सिंध के माथे का झूमर
0: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन दराज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी अवाजे पेंजे शहर मातली में अवाजे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनता जे में
4: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
3: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे का रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियों जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: आई गायनेकोलॉजिस्ट है औरतों जी बीमारियों जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफताब
3: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मैनजन 2 बजे का शाम 4 बजे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमन दिमागी बीमारियों जो माहिर मंझन 12 बजे का 1 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
4: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे दी मंझन 2 बजे का 3 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 4 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग जे खात्मे बाबत ईरानी जवाब के नाकाबिले कबूल करार ॾींदे रद्द करे छॾियो. ईरान ते वधीक हमलनि जो चिताव. समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान गेम खेॾी रहियो आहे, पर हाणे खेसि घणी ढर न ॾिनी वेंदी. ईरान जो रचायल यूरेनियम मलबे हेठां दफ़ल आहे, जंहिं ताईं जल्द पहुची वेंदासीं कॾहिं बि नाहे. चयो त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्यवाही ख़तम थी वई आहे, कुझु हदफ़ रहियल आहिनि, हफ़्तनि अंदरि वधीक हमला करे सघूं था. विच ओभर में कामयाबियूं खिते ऐं दुनिया में नए निज़ाम जो रस्तो खोले रहियूं आहिनि. नार वारनि समुंडनि ते रुगो ईरान ऐं पाड़ेसरनि जो हक़ आहे. आबदा हरमुज़ जे इस्तेमाल जे लाइ दुश्मन खे मिलियल बुनियादनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे. ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामराई विच ओभर ऐं आबदा हरमुज़ बाबति 10 स्ट्रेटजिक तजवीज़ूं जारी करे छॾियूं. मुश्तबा खामराई चयो आहे त खिते में अदम तहफ़ जो वॾो कारण अमेरिकी फ़ौजनि जी मौजूदगी आहे. अमेरिका खिते जे मुल्क़नि खे सलामतीअ जी ज़मानत ॾियण खां बि क़ासिर आहे. नार ऐं उमानी समुंड ते असां ऐं पाड़ेसरनि जो गॾियल हक़ आहे. नार में दुश्मन परॾेहनि जी का बि ज़रूरत नाहे. आबदा हरमुज़ ते नओं निज़ाम लागू करे खिते जे आवाम खे सुकून ऐं तरक़ीअ जी ज़मानत ॾेई सघिजे थी. आबदा हरमुज़ ते नए निज़ाम जे नतीजे में हासिल थींदड़ मुआशी फ़ाइदनि ते ईरानी आवाम बि ख़ुशीअ जो इज़हार कंदो. तहरान दुश्मन आॾो कॾहिं बि कंधो न झुकाईंदो. शिकस्त जा पोइते हटण नाहे. ईरानी सदर मसूद पिज़िशकियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे जवाब ॾींदे चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मक़सदु क़ौम जे हक़नि जी हासिलात ऐं क़ौमी मुफ़ादनि जो दिफ़ा आहे. ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान

सदर ट्रंप पारां ईरान जूं तजवीज़ूं रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थी वियो। 3% वाध बाद ब्रेंट तेल $105 फी बैरल थी वियो। अमेरिका में विकिरो थींदड़ कचो तेल बि महांगो, फी बैरल $99 खां वधी वियो। आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में वधीक वाध वारो इम्कान बरक़रार। अमेरिकी सदर 13-15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो। बीजिंग पारां तस्दीक। चीनी परेही तर्जुमान मुजिब सदर ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। अमेरिकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि आईटी ऐं टेलीकॉम बाबति इजलास। गिलगित ऐं आज़ाद कश्मीर में आसान ख़िदमत मर्कज़ क़ाइम करण जे लाइ कम तेज़ करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त आईटी शोबे खे हथी वठाइण ऐं बरामदात वधाइण पहिरीं तरजीह आहे। नौजवाननि जी आईटी जे हवाले सां महारत मां भरपूर फ़ाइदो वठणु घुर्जे। आसान ख़िदमत मर्कज़नि बाबति सूबनि सां गॾिजी कम कयो वञे। आईटी जे शोबे में शहरी ऐं बहराड़ीअ जे इलाइक़नि में फ़र्क़ खे ख़तम कयो वञे। इस्लामाबाद में दहशतगर्दीअ जो मनसूबो नाकाम। बलोचिस्तान मां औरत आबघाती बम्बार गिरफ़्तार। तफ़सीली जांच एतिराफ़ बाद वालिद हवाले। वरी वज़ीर सरफराज मुफ्ती चयो आहे त कानून लागू कंदड़ इदारनि मुल्क खे वॾी तबाही खां बचायो आहे। बलोच औरतूं हिन जंग जो हिसो न आहिनि। हिन केस में बि औरत जो सौट मुलविज़ हो। दहशतगर्दनि जो बलोचिस्तान सां को बि तालुक़ु नाहे। औरत खे पीउ खे मारण जी धमकी ॾेई आबघाती हमले जो चयो वियो। दहशतगर्दनि जो बलोचिस्तान सां को बि तालुक़ु नाहे। मुंहिंजे खानदान जो को बि माण्हू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां पास नाहे थियो। वरी वज़ीर मुराद अली शाह जी वज़ाहत। साहिबनि जे सवालनि जो जवाब ॾींदे वरी वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुंहिंजे खानदान जो जेकॾहिं को माण्हू पास थियो आहे त नालो ॿुधायो। बाक़ी मुंहिंजे खानदान जो माण्हू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां पास नाहे थियो। वफ़ाक़ सिंध हुकूमत जी सिफ़ारिश ते शफ़क़त हुसैन वधो खे इर्सा में सिंध जो मेंबर मुक़ररु करे छॾियो। इरसान लिगारे जी इस्तीफ़ा सबबि 3 महीननि खां इर्सा में सिंध जे मेंबर जी सीट ख़ाली पयल हुई। आबी वसीलनि वारी वफ़ाक़ी वज़ारत शफ़क़त हुसैन वधो जी मुक़ररी जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो।

रोड़ी वेझो कौमी शाहराह ते शकी रोडा सो मुबैना तौर औरत ऐं निंगीअ खे मोटरसाइकिल ते अगवा करे वेंदड़ ॿ ॼणा फौत। मुबैना तौर अगवा थियण खां बची वियल औरत ज़ख़्मी, निंगरी गुम। भारो थोर इल्ज़ाम मड़ियो आहे त जागीराणी थोर जे माण्हुनि घर ते हमिलो करे औरत ऐं ॿारीअ खे अगवा कयो। हादसे में जवाबदार ॾिनो जागीराणी ऐं अर्ज़ मोहम्मद फौत थिया। औरत नज़ीरा ज़ख़्मी थी, ॿारी रुखसाना गुम आहे। वारसनि जो ॿारीअ जी वाजियाबी जे लाइ एहतजाज। पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच कई पई वञे। निंगरी जी ॻोल्हा जारी आहे। सिजावल जुण जो ॻोठ ज़मान विरोही में कारा इल्ज़ाम हेठि औरत क़तल, नौजवान ज़ख़्मी। सोराम हेठि अमीना ज़ाल गुल मोहम्मद विरोही खे क़तल कयो। जवाबदार रहमदुल विरोही कारा इल्ज़ाम हेठि नादिर पुटु मोहम्मद विरोही खे बि ज़ख़्मी कयो। नारी जो मड़ ऐं ज़ख़्मी नौजवान इस्पताल मुंतक़िल। पुलिस जी जांच जारी। सकरनि भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान क़तल। वरिस्ताब भरिसां शमीर ज़रदारी बोरीअ वटि हथियारबंदनि फायरिंग करे ॻोठ महर अली जमाली वासी नौजवान गुलबेग जमाली खे क़तल कयो। मक़तूल नौजवान जो मड़ इस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे में
5: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता, जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
4: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे का रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियों जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
5: आई गायनेकोलॉजिस्ट है औरतों जी बीमारियों जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफताब,
4: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंजन 2 बजे का शाम 4 बजे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियों जो माहिर मंजन 12 बजे का 1 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा,
5: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन राचर जे दी मंजन 2 बजे का 3 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
2: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
3: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
1: जी हा 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन ता, जे में
5: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने बिया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन ता, जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
4: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे का रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, गायनोकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
5: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते

0: ओजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी जी बोतल
0: 6 लीटर पानी जी बोतल है बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रयो आहे
1: उनका अलावा असा वट रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे
0: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे
1: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असा सा राबतो करियो असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 0371800-3920
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.4

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

असांजो क़ाबिले इज़्ज़त निहायत ई मोहबती माण्हू साईं निसार खोड़ो साहिब जे नाले हिन पुरवकार तकरीब में मौजूदु आहियूं। मां पंहिंजे दिलि जे गहराइयुनि सां खेनि भलीकार चवां थो। अली रियाना नगारी साहिबा

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आपके बच्चों का हेल्थी फ्यूचर जुड़ा है हेल्थी हाइड्रेशन से, लेकिन जब दोनों ग्लास दिखने में एक जैसे हों तो आप इनमें से कौन सा चूज करेंगे? कंफ्यूज्ड? चूज करें नेस्ले प्योर लाइफ जो स्विस हेरिटेज को बरकरार रखते हैं।
1: डॉलर कहाँ बधी वो? अमरीकी सदर 13-15 मई ताई चीन जो दौरो कंदो। बीजिंग पारा तस्दीक चीनी परडेही तर्जुमान मूजिब सदर ट्रंप परवाह ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग ए बियन सां मुलाकातू कंदो। अमरीकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे। हकवारी जंग में कामयाबी के साल मुकमल थियण ते शहीदन के भेटा पेश करण वारो ठहराव सिंध असेंबली मां यक राय मंजूर। ठहराव ते ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाक फ़ौज खे बहादुरी ते भेटा पेश कयां थो। पाकिस्तानी शाहीननि दुश्मन जा जंग में 8 जहाज किराया। भारत जे हुरूर राफेल खे बि मिटीअ जो ढेर बणायो। भारत जा 77 खां वधीक ड्रोन्स किराया विया। भारत शहरी आबादी खे निशानो बणायो जंहिंसां आम शहरी शहीद थिया। पाकिस्तान भारत ख़िलाफ़ रुगो 54 मिंट ऑपरेशन कयो ऐं शिकस्त डि॒नी। क़ौम बि दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहिद हुई। भारत जगबंदी लाइ अमरीकी सदर खे चयो हो। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी जो मनसूबो नाकाम। बलूचिस्तान मां औरत आपघाती बम्बार गिरफ़्तार। तफ़सीली जांच ऐं एतिराफ़ बाद वालिद हवाले। वॾे वज़ीर सरफराज़ बुगटी चयो आहे त कानून लागू कंदड़ इदारनि मुल्क खे वॾी तबाही खां बचायो आहे। बलोच औरतूं हिन जंग जो हिसो न आहिनि। हिन केस में बि औरत जो सोट मुलविस आहे। दहशतगर्दनि जो बलोचन सां को बि ताल्लुक नाहे। औरत खे पीउ खे मारण जी धमकी ॾेई आपघाती हमले जो चयो वियो। दहशतगर्दनि जो बलोचन सां को बि ताल्लुक नाहे। मुंहिंजे खानदान जो को बि माण्हू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां पास नाहे थियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी वज़ाहत। साफ़ियनि जे सवाल जो जवाब ॾींदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुंहिंजे खानदान जो जेकॾहिं को माण्हू पास थियो आहे त नालो ॿुधायो। बाक़ी मुंहिंजे खानदान जो माण्हू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां पास नाहे थियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे लबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
6: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
7: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
5: तो भाई साहब क्या समझे?
8: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन ता, जे में
10: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन ता, जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
9: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे खां रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियों जी माहिर डॉक्टर राहिला पटी,
10: आई गायनेकोलॉजिस्ट है औरतों जी बीमारियों जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफताब,
9: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरोसर्जन अरबा मंजन 2 बजे खां शाम 4 बजे ताई, डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियों जो माहिर मंजन 12 बजे खां 1 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा,
10: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरोफिजिशियन राचर जे डी मंजन 2 बजे खां 3 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
9: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर

0: ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी जी बोतल
0: 6 लीटर पानी जी बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रयो आहे
1: उनका अलावा असावत रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे
0: अवां जे एतमाद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे
1: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ए बिन तकरीबन लाए हाणे असा सा राबतो करियो असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 0371800-3920
0: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबतो कंदा
0: 0331-252-5786
2: जी हा 331-525-786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network Sindh ki aawaz.
4: क्या देख रहे हो?
5: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
7: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वणन ता जे में
8: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वणन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
7: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे का रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला पटी
8: ऐं गायनेकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
7: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली.

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
2: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
3: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
4: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूदु आहे

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जे में
2: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
1: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टर राहिला पटी
2: आई गायनेकोलॉजिस्ट औरतन जी बीमारियन जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफताब
1: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान।

0: न्यूरोसर्जन अरबा मंझंद 2 बजे खां शाम 4 बजे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 बजे खां 1 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरोफिजिशियन राचर जे ॾींहुं मंझंद 2 बजे खां 3 बजे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली

0: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज़।
6: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
7: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जे में
2: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने बिया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
1: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला पटी
2: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ्ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकारी चौक बदीन रोड मातली।

सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां ईरान जूं तजवीज़ूं रद्द करण बाद आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थी वियो। 3% वाध बाद बैरेंट तेल $105 फी बैरल थी वियो। अमेरिका में विकरो थींदड़ कचो तेल बि महांगो, फी बैरल $99 खां वधी वियो। आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में वधीक वाध वारो इम्कान बरक़रार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 खां 15 मई ताईं चीन जो दौरो कंदो, बीजिंग पारां तस्दीक। चीनी परडेही तर्जुमान मूजिब सदर डोनाल्ड ट्रंप अरबा ते बीजिंग पहुचंदो। सदर शी जिनपिंग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं थियल। अमरीकी सदर चीनी सदर जी दावत ते बीजिंग जो दौरो करे रहियो आहे। हक वारी जंग में कामयाबीअ खे साल मुकमल थियण ते शहीदनि खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ सिंध असेंबलीअ मां यकराउ मंज़ूर। ठहराउ ते ॻाल्हाईंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवण हो त ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फ़ौज खे बहादुरीअ ते भेटा पेश कयां थो। पाकिस्तानी शाहीननि दुश्मन जा जंग में 8 जहाज़ किराया। भारत जे गुरूर राफेल खे बि मिटीअ जो ढेर बणायो वियो। भारत जा 77 खां वधीक ड्रोन्स किराया विया। भारत शहरी आबादीअ खे निशानो बणायो जंहिंसां आम शहरी शहीद थिया। पाकिस्तान भारत ख़िलाफ़ रुगो 54 मिंट ऑपरेशन कयो ऐं 72 शिकस्त ॾिनी। क़ौम बि दुश्मन ख़िलाफ़ मुतहद हुई। भारत जंगबंदीअ लाइ अमरीकी सदर खे चयो हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बचत मुहिम में वधीक ॿिनि हफ़्तनि जी वाधि करे छॾी। बचत मुहिम हाणे 15 जून ताईं जारी रहंदी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी जो मनसूबो नाकाम। बलोचिस्तान मां औरत आपघाती बम्बार गिरफ़्तार। तफ़सीली जांच ऐं एतिराफ़ बाद वालिद हवाले। वॾे वज़ीर सरफराज मुफ्ती चयो आहे त कानून लागू कंदड़ इदारनि मुल्क खे वॾी तबाहीअ खां बचायो आहे। बलोच औरतूं हिन जंग जो हिसो न आहिनि। हिन केस में बि औरत जो सोट मुलविस हो। दहशतगर्दनि जो बलोचनि सां को बि तालुक न आहे। औरत खे पीउ खे मारण जी धमकी ॾेई आपघाती हमले जो चयो वियो। दहशतगर्दनि जो बलोचनि सां को बि तालुक़ु न आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, जीए एफएम 88 नेटवर्क। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: किरु शौक हो ना तो खे मुझे रो पाए तैयार थे जो
3: तू आज भी हसी।
2: थोड़ो पाए तो देखार
4: ना। मां मां थकी पई आया।
2: ना पुटा, ही थकन है, रत जी कमी है। दिसता केडो ना फिको थी हुआ है तुझो चेहरो।
4: छा कया मां,
2: 6 महीना थी वैन पुटा, तू उम्मीद सा आई आई हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी। कच्चू भाजू खाईंदी कर पुटा, तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से। उनन साई त खून ठांदो है, इनसा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बार के। पुट हाने तू मां थण वाली आही, पहजो ख्याल रखन बेन खां पर अधिक जरूरी है।
3: मेरी बातें तेरे जिम्मे, अब ये तुझको निभानी है।
5: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
6: छा अहां जो चेहरो बेजान ए डल लगे थो? हाणे वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम ए रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जंहिं में
8: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, बिया मुख़्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
8: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
7: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकारी चौक बदीन रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो जीएफएम 90.4।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हाँ, नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो एक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, जिन्हे शामिल आहे एसपीएफ 30, सिज जे नुकसानकार किरणन खां बचा लाए कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म करण लाए विटामिन सी, ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन, जेके डियन तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ ऐं चमकदार ग्लो। रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद। हर डी हुजे एक नओ ग्लो एक नओ कॉन्फिडेंस। हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चटाभेटी इम्तिहान के नतीजन खिलाफ एहतजाज कंदड़ उम्मीदवार खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे छी। फैल उम्मीदवार के बीहर इम्तिहान लाए तैयारी करण की भी सलाह। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन चयो आहे त फेल उम्मीदवार शिकायत लाइ राब्तो कन, एहतजाज खां पासो कन, बी सूरत में कार्रवाई थींदी। फेल थींदड़ उम्मीदवार बीहर इम्तिहान लाइ तैयारी कन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंहिंजी इम्तिहानी अमल में शफ़ाफ़ियत, मेरिट ऐं ईमानदारी खे यकीनी बणाइण लाइ हर मुमकिन कोशिश करे रही आहे।
5: मुझे खानदान जो को भी मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां पास न वडे वजीर मुराद अली शाह की वजारत साफियन के सवाल जो जवाब दींदे वडे वजीर मुराद अली शाह मुझे खानदान जो जेकर को मानू पास थो है त नालो बुधायो बाकी मुझे खानदान जो मानू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मां पास।

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जी लताड़ खिलाफ़ एहतजाज कंदड़ फयाज़ शहर ऐं रफ़ीउल्ला कुरैशी जी गिरफ़्तारीअ खां अॻु वारी ज़मानत मंज़ूर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंतिज़ामिया मेरठ जी लताड़ खिलाफ़ एहतजाज कंदड़नि ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल करायो हो। अदालत फयाज़ शहर ऐं रफ़ीउल्ला कुरैशी जी 50,000 रुपियनि जी मचलकनि एवज़ ज़मानत मंज़ूर थी।
1: बनू में पुलिस चेक पोस्ट ते हमलो कंदड़ दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो हक़ महफ़ूज़ रखूं था। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ते वाज़े करे छॾियो। अफ़गान नाज़िमुल उमूर जे परडे॒ही आफ़ीस तलबी बनू में पुलिस पोस्ट ते दहशतगर्द हमले लाइ अफ़गान सरज़मीन जे इस्तेमाल ते सख़्त एहतजाज। दहशतगर्दी लाइ अफ़गान सरज़मीन जे इस्तेमाल ते घणती बि ज़ाहिर। परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त जांच ऐं शाहिदनि मां साबित थियो आहे त बनू में पुलिस पोस्ट ते हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दनि कई। गडि॒यल क़ौमनि जी रिपोर्ट्स में बि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंज़ीमनि जी मौजूदगी जूं साबितियूं आहिनि। अफ़गान तालिबान ख़ारिजियनि हिंदुस्तानी फितने ऐं दाइश ख़िलाफ़ कार्रवाई करे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सरमस्त धरती
3: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोर्टिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम। हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम।

अब चमकती, नर्म और बेदाग जेल्ड एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसान दिशाओं से तहफ़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।

अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स।

0: सो दोस्तों बिल्कुल हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जी तव्हां गानो ॿुधियो तमामु प्यारो प्यारो अचो त कुझु वॉइस नोट्स हाणे प्रोग्राम में शामिल कयूं पिया जेका हिन प्रोग्राम रौनक महफ़िल जी हक़ीक़ी रौनक आहिनि अचो त ॿुधूं
1: अॼु अवां तस्वीर मोकिलियोसीं मूंखे टुवाल साण यानी कारे रंग ते कपिड़ा पातल आहिनि ऐं मूंखे उमेद आहे त तस्वीर अवां ताणी पुॻो हूंदो ऐं हेमी बीटी क्रीम ज़बरदस्त क्रीम अचे सुठो प्यारो ख़ूबसूरत बनाए थो दोस्त आहिनि इम्तियाज़ अली बंगलाणी राणो ब्रोही निंडड़ो आसिफ अली तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो चाचड़ हुन खां पोइ बिलावल निंडड़ो प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं सुभान जेको आहे सो तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो के अला
0: अला हाफ़िज़ अदा तव्हांजी महिरबानी भाउ तव्हांजी सेल्फी बिल्कुल मूं ताईं पहुती इमाम निनो भमरो साहब जे बि सवाल जो जवाबु आहे ओके भाउ तव्हांजो जवाबु नोट कयो आहे हिकिड़ो ही वॉइस नोट
2: वालेकुम बाबर बादशाह ख़ुशि आहियो ख़ैरात में सही आहे तव्हांजो पराम ॻाल्हायां बार बार हिन बीटी क्रीम ते कलाम ठाहियो आहे

0: केडियन तव्हां जे चेहरे के कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: All dear listeners, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम में बाबर शेख आया हुआ असां गॾु ऐं रौनक महफिल प्रोग्राम में हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में अव्हां खे ॿुधायो वञे पियो अबाउट द प्रोडक्ट छाकाणि त स्पॉन्सर शो आहे त हिन जी स्पॉन्सरशिप बि जेका आहिनि मां अव्हां ताईं पहुचायां पियो ऐं हिन जो पैगाम अव्हां ताईं कन्वे कयां पियो ऐं इहो पैगाम जेको हिन जो आहे न तमामु घणो फ़ाइदे वारो अव्हां जे लाइ साबित थी सघे पियो जेकॾहिं अव्हां इन जी प्रोडक्ट ते थोरो गौर वीचार करे इस्तेमाल करे सघो छाकाणि त जिन जिन इस्तेमाल कई आहे उन्हनि इहो ई फीडबैक ॾिनो आहे त बाबर भा वाह वाह वाह वाह ऐं वाह वाह हेमे ब्यूटी त वाह वाह आहे त बिल्कुल दोस्तो तव्हां बि हेमे ब्यूटी जो फ़ाइदो हासिल करे सघो था ऐं विद इन 7 डेज़ तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे पियो तव्हांजे चेहरे ते दाग धब्बा मोहिड़ा छावां झुरियूं छुरियूं न बल्कि झुरियूं जी हा ऐं डार्क सर्कल्स अगरि आहिनि उहे तव्हांजा दूर थी सघनि था विद इन 7 डेज़ तव्हांखे जेको हिन जो रिज़ल्ट मिलंदो न तव्हां थींदा बाबर भा या हेमे आहे या कुझु जादू आहे मां थींदो आहियां पाण ॼाणो हेमे अथव इस्तेमालु करे ॾिसो रिज़ल्ट कीअं थो मिलेव सो वधीक तव्हां हिन मुतालिक़ का बि मालूमात तव्हांखे घुर्जे त तव्हां हिन जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे सघो था नंबर आहे 0336-7135-407 जी हा 0336-7135-407 कुझु मैसेज आहिनि Babar bro, how are you? I am Farzana Baloch and I am enjoying your program, Babar bro. Thank you, Farzana sis, and you are enjoying the show. And what about the product Hame Beauty? Please tell me about the product as well. So, kuch voice notes bhi aahin hai, kuch messages bhi aahin. He message chha pe chavan ta. Okay. Main Noor Ali Khas ke liye village, Dr. Yar Mohammad Jhanji se. And aapke question ka answer hai, 500 rupay ke note ke peeche. 500 रुपए के अल्फाज साथ भावल दीन जकरिया का चलें जी देखते हैं आपने जवाब सही दिया है या नहीं सो अलाए कड़ो 500 जो नोट डिठो आया दे मेरा लिखो ही वाइस नोट आए बुदो
2: अल्लाह पाक तवा के बाबर साईं आए तवा जी पूरी टीम के 5-12 जे सदके आबाद रखे जवार मोहम्मद बचल शंबाणी अली हसन बाबो सोनड़ो भाव सोना खान मस्तोई वफा वईद जतोई ऐं जेकी बि नज़ीर अहमद मंगरियो साहब जेकी संगत ॿुधे थी पारां सैयद गुलाब अली शाह बुखारी तरफ़ां अस्सलाम अलैकुम या अली मदद ऐं शमन जो प्रोग्राम गानड़ो जो पासो उहो हली रहियो आहे मुंहिंजो सॼण साईं ज़ोर आहे इहो ॿुधी रहिया आहियूं तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी अली अली
1: अली अली अदा तव्हांजी महिरबानी बाक़ी यार इहो शमन जो प्ले त न कयो मां अलाए कहिड़ो थो भाउ असांजो प्रोग्राम ॿुधे असांजो गुलाबड़ो अलाए कहिड़ो थो ॿुधे शाह साहिब तव्हांजी महिरबानी थैंक यू अदा हिकिड़ो ही वॉइस नोट अछो त ॿुधूं छा पिया चवनि
3: अस्सलाम वालेकुम यार मदद बाबर भाउ मां अब्दुल अशर पियो ॻाल्हायां अकरी चौधे ऐं मुंहिंजो बाबा बि ॿुधे पियो अली कलाब शर त बाबर भाउ तव्हां जेको सवाल कयो आहे त 500 जे नोट जे पोयां कहिड़ी शइ छपियल आहे त उन जे पोयां जेका छपियल आहे तस्वीर उहा आहे बादशाही मस्जिद तो असांखे हिन प्रोग्राम में लाज़मी एड कयो त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी
1: ठीकु आहे दादा तव्हांजी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थिया तव्हां ऐं बिल्कुलु तव्हांखे एड करे छॾियो आहे ॿियो हुकुम कयो भाउ बाक़ी हेमे जे बारे में तव्हां कुझु ॿुधायो कोन वेल इट्स ओके हिकिड़ो ही वॉइस नोट ऐं ही छा पिया चवनि अचो त ॿुधूं
4: अस्सलाम वालेकुम मीरपुर ख़ास ॻोठ वली मोहम्मद रिंद खां इम्तियाज़ अली बंगलाणी बाबर भा हेमे ब्यूटी क्रीम बेहतरीन आहे चेहरे जी रौनक ऐं ॻाइण वॼाइण जो सेगमेंट न आहे तव्हांखे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में मारवाड़ी में लफ़्ज़ ॿुधायां थो

करूं चरेरी लाल के में ब्यूटी क्रीम चरो मां जो होए जासे ॾाढो सुठो पवर भाउ मुंहिंजा कुझु दोस्तनि काठड़ी खां गुलाम रसूल मरील विलेजवान शाम यूसी विके असांजी डिस्ट्रिक्ट लाड़कण खां असांजो क़ाबिल एतराम मोहतरमा अशरफ अली मिराली सज्जन अली मिराली तनवीर अली मिराली मुमताज़ अली मिराली

0: अड़काणे खां आसिफ अली चाचर तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। शराज अली बंगलाणी मां बिलावल बंगलाणी दिलावर अली बंगलाणी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम माला अली मदद भा बंगलाणी साहब तव्हांजी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थिया थैंक यू वॾा। ऐं लिसन्स बिल्कुल तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहे न हिन में जेको कॉजिक एसिड शामिल आहे इहो तव्हांजे चेहरे तां दाग धबा निशानात जो ख़ात्मो करे सघे थो। ऐं विद इन 7 डेज तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट जेको मिलंदो न तव्हां पाण चवंदा बाबर भा हेमे हेमे आयो त मां बि इहो ई पियो चवां बाबा हेमे हेमे अथव। अच्छा वठण वक़्तु तव्हां शाही बाज़ारि तव्हां जॾहिं वञो पिया त तव्हांखे हुते सुठे कॉस्मेटिक्स वारे वटि आसानी सां मिली सघे पई। वधीक मालूमात लाइ तव्हां हिन जे नंबर ते कॉल कंदो, नंबर आहे 0336713547। जी हा 0336713547। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे। ठीकु आहे, सो हीअं प्रोग्राम में तव्हांजे लाइ शामिल कयो आहे ममताज़ लाशारी जी आवाज़ में प्यारो प्यारो गानो। अचो त ॿुधूं पिया हिन रौनक महफ़िल में।

0: हाण नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिंमें शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: सो लिसनर्स बिल्कुल ममताज लाशारी जी आवाज़ में यार जबरदस्त कलाम अवां ॿुधियो मैडम ही मखण दा चाणा उमीद आहे अवां खे पसंदि आयो हूंदो सो अवां जा कुझु मैसेजेस रहियल आहिनि जेके शामिल करे प्रोग्राम में बाकी 12 मिंट बचिया आहिनि ऐं पोइ अवां खां मोकिलियां पियो चनेसर सोलंगी गोठ वासन दलग मीरपुर ख़ासि खां जवाबु आहे ओके अदा गुलाब लगारी गोठ बशाम खान रिंद से गाजी खान रिंद चाचा मंठा रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कोनैन जहरा आपका शो अच्छा चल रहा है आपकी कंपेयरिंग अच्छी है आपका आवाज अच्छा है पहली मर्तबा शामिल हो रहा हूँ यू आर वेलकम भाई आपको और आपकी पूरी जो है रिंद ब्रादरी को वेलकम कहते हैं पूरी फैमिली को हम वेलकम कहते हैं ठीक है आपका बहुत शुक्रिया सो झुली का खालिक लाशारी जवाब आए बादशाह मस्जिद ओके भा ॾिसूं पिया ऐं तनेसर सोलंगी साहब अदा तव्हांजो जवाब मूं ताईं पहुतो आहे अज़ादार अहमद फ्रॉम लाड़काणे खां बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम या अली मदद वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक बाबर भाई आपने FM कैसे ज्वाइन किया आपका इंटरेस्ट कैसा है FM में ये बताएं हमें टॉपिक का जवाब है ओके एंड कोई सॉन्ग तो सुनाएं सूफान अबड़ो का आज आपको मेरी फरमाइश चलानी पड़ेगी आई विल ट्राई अदा

0: So, दोस्तों आजादर भाई आजादर भाई ये जो है बातें फिर कभी, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सो आइए कुछ वॉइस नोट्स इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। और ये हमारे साथ कौन है, ये इन्होंने बिल्ली भेजी है, फिर इन्होंने जो है हंसता हुआ स्मिली भेजा है। इट्स ओके भाई, आप हैं कौन, अपना नाम जरूर लिखा करें। एक ये वॉइस नोट शामिल करते हैं प्रोग्राम में, आइए सुनते हैं।
1: बाबर भा अस्सलाम वालेकुम, बाबर भा माशूक मौलाई पियो गलाया शहर बांदी का, तवा जो शो बुधी रहा हूं, तमाम सुठो हली रहयो आहे। तवा जो सवाल बुधो आहे, सो सवाल जो जवाब यो आहे, 500 जे नोट जे पोयां बादशाही मस्जिद जो ही तस्वीर छापिल आहे। सवाल जो जवाब यो आहे साईं।
0: चलो साईं ठीक आहे, एकड़ो ही वॉइस नोट।
2: अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, चाला से खुश आयो, कामरान अली मैसर रफीक मैदर का ताए प्रोग्राम बना बैठो ऐसा सारी फैमिली ताए प्रोग्राम दे पई, स्पेशल सलाम आई साईं इमदाद अली शाह बुखारी के जेको ताए प्रोग्राम दे पियो बी सारी जे संगत दे पई सजो जेको ना बंदा सिनर सबनी के सलाम जन तन बड़ी मेहरबानी साईं।
0: वालेकुम अस्सलाम
3: बाबा बरसलालकुम
0: यार। अच्छा इन जो बदफा मैसेज आदा बदफा मैसेज सॉरी भा, एकड़ो मैसेज एकड़े देने जो ठीक है। सो ही छा पे चवन चवन पे नजीर अहमद मंगरियो, मोहम्मद सुलेमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल हमीद, फकीर नूर मोहम्मद भारो, फकीर शेर मोहम्मद कांधड़ो, नसरुल्ला मंगरियो, मोहम्मद गुलजोणी जो, नबन उर्फ नबी बख्श, हाजी गुलजार, अदा खबर है तांगे व्हाट्सएप जो सिलसिलो मां शुरू ही न लाए कयो त जे तांजा हेडा नाला जे के न ये मां ता पांजे आवाज में छो आ अवा व्हाट्सएप यूज कयो पया, व्हाट्सएप ते भी वरी जेको तहरीरी सूरत में मैसेज मोकले पया जेको जेका न ई न करण गुर्जे। बहरहाल वॉइस नोट सेंड कयो छाकाण ते व्हाट्सएप यूजर आयो तवा ऐ ही केरा सजन अली मीराली साहब बाबा प्यारी प्यारी सेल्फी मोकली आए बाबा ताड़ियों थी वन सजन अली मीराली साहब मीराली साहब बाबा चश्मो पातल आए तमाम प्यारो छोकरो आए हैमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कंदड़ आए वाह साईं वाह वाह सडेण वाह वाह सडेण वाह ता जे लाए गानो मां वेंदे वेंदे प्ले क्या पियो स्पेशली ता मीराली बिरादरी जे लाए मुखे ॾाढी खुशी थींदी आहे ऐं ही केरा ही असां सां गॾु ही चवनि पिया त तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में, मसला सिर्फ़ मोहबत का ही नहीं फिकर का भी है। बिल्कुल आपसे यही इल्तिजा है कि आप मुझे दुआओं में जरूर याद रखें और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा, जा तुझे माफ किया। आगे क्या होता है वो लाइन आपके लिए स्पेशली, ठीक है। सो एक ही वॉइस नोट, आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है इस रौनक महफिल में।
4: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद गुड शेरमंद मायरन का सैयद गुलाब,
0: अच्छा ही भी गुलाबड़ो असा जो भा डबल थी गया है, अदा वॉइस एकड़े जो एकड़ो शामिल थिंदो ठीक है, एकड़ो ही वॉइस नोट।
5: अस्सलाम वालेकुम बाबर भाँ जा केड़ा लनी खुश आयो, तबीयत तवांजी ठीक आए, शामीर अली चाचड़ पनो अकिल खा गलाए पियो, प्रोग्राम आवाज तमाम बेहतरीन सुठो ला जवाब हले पियो, हेमी बीटी क्रीम सो इस्तेमाल कें पिया, तमाम बेहतर सुठो रिजल्ट आए, असा दोस्तन के चवंदा हेमी बीटी क्रीम इस्तेमाल कें तमाम बेहतर सुठो आए, प्रोग्राम आवाज तमाम बेहतरीन, जेके पिनी प्यारा दोस्त बुधी रहा खोड़ सारा सलाम।
0: चलो वालेकुम अस्सलाम यार, हाँ बटरी कॉलर्स के शामिल किया ना, कॉलर जेके मुदे कावड़ माने उन्हनि खे तव्हां पहुचाईंदो, बल्कि कॉलर जो जॾहिं मां नालो खणंदो आहे न त असांजो सेट जेको आहे न मोबाइल उहो थींदो आहे न ईअं कीअं ईअं कीअं। सो इट्स ओके दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त प्रोग्राम में तकरीबन सतो महीनो आहे यार ख़ैर सां, ऐं तव्हां जेके प्यारा लिसनर आहियो मुंहिंजा अलहमदुल्ला तमामु प्यारा आहियो, ऐं ॿाहां ॿेली बि आहियो मुंहिंजा हिकिड़े क़िस्म जा जेके हैमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदड़ आहिनि, जॾहिं हैमे जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि न त बिल्कुलु ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, छाकाणि त स्पॉन्सर शो आहे। ॾिसो स्पॉन्सर शो में असांखे हुननि जो पैगाम अवां ताईं कन्वे करणो पवंदो आहे, हिन जो मक़सदु इहो कतन कोन्हे त मां तव्हांखे इंसिट्स कयां ऐं तव्हांखे ज़ोर भरियां त यार इहा इस्तेमालु करणी अथव, न मां जस्ट हुननि जो पैगाम अवां ताईं कन्वे कयां पियो। हाणे अवां जे मथां आहे तव्हां हिन जी प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया, अगरि सुठो रिज़ल्ट मिले पियो त तव्हां रुटीन लाइफ में शामिलु कयो पिया, नथो मिले त का ज़ोर ज़बरदस्ती कोन्हे, पर सतो महीनो आहे ख़ैर सां ऐं हर को इहो ई ॻाल्हि करे पियो त हैमे जो रिज़ल्ट सुठो मिलियो आहे, त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे तव्हां जहिड़ा प्यारा लिसनर्स आहिनि, ऐं जॾहिं ही कहिड़ा ही छा पियो चए हथ ॿधिया अथई हैमे खे, ठीकु आहे आपको जो है हैमे खे हथ हलाए छो ॿधिया अथई आई डोंट नो। अच्छा हैमे वारनि खे जेको आहे न तव्हां इहो फीडबैक ॾेई सघो था त तव्हांखे प्रोग्राम कीअं लॻियो, सत महीना जेका हुन स्पॉन्सरशिप कई, उन्हनि जी प्रोडक्ट कीअं लॻी, उनजो हेल्पलाइन नंबर तव्हां नोट करे वठो ऐं कॉल कयो धड़ाधड़, इहो बि चई सघो था बाबा छा आहे छा आहे छा आहे छो स्पॉन्सरशिप जेका आहे ख़तम पई कई वञे। बहरहाल नंबर आहे 0336713507, नंबर वन सेकेंड रिपीट कयां पियो 0336713507 407 तवान ने बरती कॉल करी हेमे जे बारे में इनका मालूमात वठी सगो था आई दोस्तों बिल्कुल जो का जुमेराती यानी खमीस ते पाण प्रोग्राम में कुरानदाजी कंदासी ए खमीस ते असा जो आखरी प्रोग्राम हुदो पोए कुछ दिन लाए माजरत खवा हुदो सवा का इन जे लाए खमीस ते तवा जी वद खवा दे सेल्फीज इंदियो त पोए वाह वाह थी वेंदी एकडो ही वॉइस नोट बदो
6: विसरे सारो लोक विसरे सारो लोक शाल न विसरी तू तोखे के दो मु सांडो आए साम अस्सलाम वालेकुम बाबर यानी गोट जुड़ भी थरपारकर खां वफा गुलाम रहीं बलोच अवां जे पुरवा बुधो पिया हमेशा जिया अज लाजवाब पे हले तमाम जबरदस्त शामिल कयो मोहब्बतन जी सफर में
0: चलो अदा तांज मेहरबानी तांज मैसेज मु शामिल करे छियो ते दोस्तों अचू ता अज जी जो है ध्यान जी खान सेगमेंट जी तरफ अज प्रोग्राम में सवाल मु रखियो त जो पाकिस्तानी 500 रुपए जो नोट है उन पुठियां छा जी तस्वीर छपे तो सही जवाब है बादशाही मस्जिद ठीक है द फर्स्ट बैंक नोट जो है इशू किया वो पाकिस्तान में यहां से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर क्या स्टेट बैंक की तरफा उ तारीख है 1 अक्टूबर 1948 जी हाँ जहां स्टेट बैंक की तरफा पे नोट इशू किया वो हो उन तारीख है 1 अक्टूबर 1948 पंजे रुपया दह रुपया 100 रुपये जो है प्रिंटेड किया वो थॉमस डी ला रियू एंड कंपनी की तरफा ठीक है पे मतलब नोट 1 अक्टूबर 1948 में इशू किया वो 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया वा नोट इशू किया वह हुआ ठीक है सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या 100 रुपये जो नोट आया तो 100 रुपये के पुठिया कायदे आजम रेजिडेंसी छपल है जो 10 रुपया नोट है उन पुठिया खैबर पास जो 1000 रुपया नोट है उन पुठिया इस्लामिया कॉलेज पिशावर छपल है ठीक है सो यह हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहां शेयर कई व्हाट्सएप का अलावा जी 888 मुझे सही जवाब दिना उन्होंने शामिल आय चनेसर सोलंगी साहब ही कहरा है गुलाब लाशारी गोच बिशाम खान रिंद खां गाजी खान रिंद साहब ही कहरा है जुलरी खां खालिक लाशारी साहब सही जवाब दिनों है बो केर अस सही जवाब दिनों आजादार अहमद साहब सही जवाब दिनों इमाम दिनों भमरो साहब सब का पे सही जवाब दिनों सो व्हाट्सएप सदा न नजीर खोसो साहब सही जवाब दिनों जवार मोहम्मद बच्चल शंबानी साहब सही जवाब दिनों नजीर मंगरियो साहब सही जवाब दिनों असा तमाम घना प्यारा लिसनर्स जिन असा सही जवाब दिनों वीदे वीदे एक ही शॉर्ट वॉइस नोट आई अवे प्ले क्यों तो वाया चलो अदा तांजी मेहरबानी शर्ट साहब प्रोग्राम में शामिल है तो दोस्तों वींदे वींदे प्यारो कलाम है जो मुझे फेवरेट है छाकाण तो मुझे फरमाइश वधीक आई कोन तो ही वींदे वींदे प्यारो कलाम अवां जे लाइ प्ले कयो है तवां खे भी इंशाल्लाह डाढो वणंदो आई प्रोग्राम जे हवाले सां तवां जो जेको भी फीडबैक हुजे असां जो व्हाट्सएप नंबर आए आई हैम ए नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जी सेल्फी तवां खे असां जे व्हाट्सएप नंबर ते ही सेंड करनी आ 03000113488 इन्हनि जो नंबर आहे हेल्पलाइन 03671354 07 ठीक है यो तवा नंबर नोट करे नंडे कॉल करे सको था तो ही कलाम आवा सबनी जे लाए अगले प्रोग्राम ताई मुखे दियो इजाजत सदाई गड अल्लाह हाफिज़ ऐं जिंदगी बखैर।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: खुशखबरी, खुशखबरी, अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे में
3: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, बिया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 वगे खां रात 8 वगे ताईं।